हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 MHz पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 19वीं तिथि तदनुसार 10 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 8:54 और 28 सेकंड्स हुए हैं। हमारी आज की सभा अब शुरू होती है।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी जनर से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

शाम 7 बजे किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी, जिसे हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर से रिले करेंगे। 7:30 पर शाम को ICC वीमेंस T20 क्रिकेट एशिया कप 2026 के अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम संयुक्त अरब अमीरात में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनवाया जाएगा। सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस गान और 9:20 पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में सुनिए श्रुति साडोलीकर काट करके गए कुछ भक्ति गीत। सुबह 9:40 पर आप सुनेंगे आशा भोसले की गाई गैर फिल्मी गजलें।

सुबह 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत के अंतर्गत गाने पुराने ज़माने के, और 10:30 पर आप सुनेंगे गाने नए तराने नए। इसके साथ ही शाम 6:05 पर आपको सुनवाया जाएगा फिल्म संगीत। युवानी कार्यक्रम युवा दोस्त सुनेंगे शाम 5 बजे, और 5:30 पर कार्यक्रम होगा गीतों भरी कहानी अपना ही अक्स। शाम को 6:20 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी नागौर की चिरमी चंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में 76% से अधिक मतदान, दूसरे चरण के तहत 147 नगर निकायों में कल वोट डाले जाएंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कृषि उपज को प्रोसेसिंग और बाजार की मांग से जोड़ते हुए किसानों को अधिक मूल्य दिलाने पर जोर दिया। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। और 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के तहत 76% से अधिक मतदान हुआ है। 162 नगरीय निकायों के लिए हुए चुनाव में 43,95,400 से अधिक लोगों ने वोट डाले। इन निकायों के 5,393 वार्डों में करीब 57,52,000 मतदाता पंजीकृत हैं। सबसे अधिक 91.98% मतदान प्रतापगढ़ जिले की अरनोद नगर पालिका में हुआ। यहां 5,190 मतदाताओं में से 4,774 वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं सबसे कम 63.84% मतदान भीलवाड़ा नगर निगम के लिए हुआ। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान सुचारू और शांतिपूर्ण रहा। इसी के साथ 20,600 से अधिक प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीन में बंद हो गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बार मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया, जिससे वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा है।
1: मतदान जो है पूर्णतया एक वैधानिक तरीके से, नियमबद्ध तरीके से, शांतिपूर्ण वातावरण में, भयमुक्त वातावरण में और एक सुव्यवस्थित तरीके से जो है संपन्न हो गया। मतदान का परसेंटेज भी जो है बढ़ा है, तो इसका ये मतलब है कि लोग जो है वो उनको निर्वाचन की जो मशीनरी है उसके ऊपर पूरा विश्वास है और अपनी स्थानीय सरकार चुनने के लिए भी उनके मन में बहुत जोश और उत्साह है।
0: वहीं कल नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 147 निकायों के करीब 4,700 वार्डों में हो रहे इस चुनाव में 18,266 उम्मीदवार मैदान में हैं। 45 वार्डों में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। इस चरण में 6 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 121 नगर पालिकाएं शामिल हैं। इनमें जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और पाली नगर निगम शामिल हैं। इस दौरान 87,60,000 से अधिक वोटर्स प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इससे पहले कल शाम चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। आज प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। हमारी अजमेर संवाददाता ने बताया कि वहां मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
2: कल जिले के अजमेर, पुष्कर, किशनगढ़ सहित 9 निकायों में 165 वार्डों में 600 से अधिक उम्मीदवारों का 6,50,000 से अधिक मतदाता ईवीएम मशीन का बटन दबाकर भावी परिणाम तय करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिला प्रशासन द्वारा शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने के सभी इंतजाम किए गए हैं और आज मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण के बाद निर्धारित स्थानों के लिए रवाना कर दिया जाएगा। नलिमा धादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: उधर पश्चिमी जिले जोधपुर में भी मतदान को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। वहीं प्रत्याशी भी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं।
3: जोधपुर में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गत दिनों जनसंपर्क किया, जबकि कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने शासनकाल में करवाए गए कार्यों की जानकारी दी। जोधपुर नगर निगम चुनाव में सामान्य की 30, ओबीसी की 10, एससी एसटी की 7 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जबकि सामान्य की 14, ओबीसी और एससी एसटी की 2-2 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला होगा। वहीं जिले की 6 नगर पालिकाओं मथानिया, पीपाड़, भोपालगढ़, तिवरी, बिलावड़ और बालेश्वर में बुधवार को मतदान शांतिपूर्ण रहा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: राज्य के 309 नगर निकायों के लिए मतदान के बाद वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी। अध्यक्ष के लिए चुनाव 21 तारीख को होगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कृषि उपज को प्रोसेसिंग और बाजार की मांग से जोड़ते हुए किसानों को अधिक मूल्य दिलाने पर जोर दिया है। मुख्य सचिव एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के विकास को लेकर कल जयपुर में समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने हितधारकों के साथ हुई इस बैठक में छंटाई, पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग, परिवहन और आपूर्ति तथा ब्रांड निर्माण के लिए सुविधाएं विकसित करने को कहा, जिससे फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आए और किसानों को बेहतर बाजार तथा मूल्य मिल सके। मुख्य सचिव ने कल ही राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध बजरी खनन की रोकथाम और वन्य जीव संरक्षण की दिशा में किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना के लिए पूरी तरह संवेदनशील और गंभीर है। उच्चतम न्यायालय के आदेशों और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों की अनुपालना में अभयारण्य क्षेत्र में 40 अत्यधिक संवेदनशील स्थलों की पहचान की है। इन स्थानों पर अवैध खनन और परिवहन पर नजर रखने के लिए हाई मास्ट टावर, ऑप्टिकल फाइबर तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और थर्मल नाइट विजन कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि देश में वित्तीय लेन देन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। उधर मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कल से शुरू हुई। दो दिन की इस बैठक की थीम मजबूती, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण है। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच सीमा पार निवेश, भुगतान प्रणाली, स्थानीय मुद्राओं में कारोबार को बढ़ावा देने सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जा रही है। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज होगा। नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में होने वाले समारोह में वर्ष 2025-26 के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और विद्यालयों को सम्मानित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 30 सालों से जवाहर नवोदय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। हनुमानगढ़ के प्रसिद्ध सुखा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा में आज सालाना जोड़ मेले का आयोजन हो रहा है। इसे लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि मेले के लिए गुरुद्वारा परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है।
4: गुरुद्वारा परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। मेले के दौरान गुरुद्वारा परिसर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे तथा श्रद्धालु मत्था टेक कर अरदास करेंगे। वहीं भारी लंगर का वितरण किया जाएगा। आयोजन को लेकर सेवादारों की ओर से व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। मेले को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह है। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमान।
0: अजमेर के मसूदा के पास कल हुए सड़क हादसे में 2 श्रद्धालुओं की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, वहीं 13 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इनका इलाज अजमेर के अस्पताल में किया जा रहा है। ये दुर्घटना एक ट्रैक्टर ट्रॉली की बस से टकरा जाने से हुई। ये सभी लोग मध्य प्रदेश के मंदसौर के निवासी थे और रामदेवरा के दर्शन कर पुष्कर जा रहे थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के मोकी में कल भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में 76% से अधिक मतदान, दूसरे चरण के तहत 147 नगर निकायों में कल वोट डाले जाएंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कृषि उपज को प्रोसेसिंग और बाजार की मांग से जोड़ते हुए किसानों को अधिक मूल्य दिलाने पर जोर दिया। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। और 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
5: आकाशवाणी नागौर का ये चिरवी चैनल है। सुबह के 9:11 हुए हैं। अब आप सुनेंगे रामचरित मानस गान।

भरत को ये प्रतीति है कि श्री राम को वनवास दिलाना काल का कुचक्र है। कैकई तो मात्र माध्यम बन गई। उन्हें चिंता इस बात की है कि किस प्रकार श्रीराम का राज्याभिषेक कराया जाए। ये सोचकर मन में आशा का संचार होता है कि श्रीराम गुरु की अवज्ञा नहीं करेंगे, किंतु दूसरे ही क्षण मन में ये विचार भी आता है कि वशिष्ठ जी श्रीराम की रुचि को ध्यान में रखकर ही जो कहना होगा कहेंगे। भरत स्वयं तो मात्र सेवक हैं, जिसका हठ करना भी कुकर्म होगा। जब भरत समेत सभी सभासद वशिष्ठ जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो मुनिवर ने आशातीत कुछ भी नहीं कहा। बोले, श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। उनका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है। नीति, प्रेम, परमार्थ तथा स्वार्थ को उनसे अधिक कोई नहीं जानता। वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, दिक्पाल, माया, जीव सभी की आज्ञा प्राप्त है। अतः उनकी रुचि जानकर ही कुछ कहने में सबका हित होगा।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। 9:20 हुए हैं। लीजिए भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में सुनिए कुछ भक्ति रचनाएं। आज की कलाकार हैं श्रुति साडोलिकर काटकर। लीजिए सुनिए इनका गाया पहला ये भक्ति गीत।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम, और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से श्रुति साडो लेकर काट करके गए कुछ भक्ति गीत। कार्यक्रम है वंदना। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से श्रुति साडू लेकर काट करके गए कुछ भक्ति गीत। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9:40 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए गैर फिल्मी गजलें। आज की फनकार हैं आशा भोसले। आइए सुनते हैं इनकी गाई चंद गजलें।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का प्रोग्राम गाने पुराने जमाने के। पहला गीत हमने लिया है फिल्म पराया धन से। इसे गाया है किशोर कुमार ने।

0: जवाब तुम अपने घर जाओ। देखो मुनि, बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, चाहे तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
2: मेरी बुढ़िया के नाम।
3: पर दादी
0: हाँ
3: आपके नाम
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
3: क्या
4: आरबीआई कहता है।
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार का गाया फिल्म परिचय का ये गीत।

फिल्म संगीत में भी आप सुन रहे थे गाने पुराने जमाने के प्रोग्राम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए गाने नए तराने नए। प्रोग्राम का पहला गीत पेश है उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम टशन।

टशन फिल्म का ये गीत था जिसे गाया था उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर ने। लीजिए अब सुनिए फिल्म दम लगा के हाइशा का गीत जिसे गाया है मोनाली ठाकुर ने।

लीजिए अब पेश है अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान का गाया ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म दिल्ली वाली जालिम गर्ल फ्रेंड से।

आइए अब हम आपको सुनवाते हैं फन्ने खान फिल्म का गीत। इसे गाया है सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार ने।

0: चल माना इस बारी।
1: और यह है प्रोग्राम का आखिरी गीत। फिल्म का नाम वेलकम टू द जंगल। आवाजें हैं काव्य कृति और साकेत बिरोलिया की।

0: फिल्म संगीत के प्रोग्राम में भी आप सुन रहे थे गाने नए तराने नए, ये आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। 11 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण मुंबई केंद्र से।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं,
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
5: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं सोना महापात्रा की आवाज में हुसैन हैदरी का लिखा ये अगार फिल्मी गीत।

सोना महापात्रा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये गैर फिल्मी गीत। और आइए अब सुनते हैं हरिओम शरण का गाया ये भक्ति पथ।

हरिओम शरण की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये भक्ति पद। और आइए अब सुनते हैं बेगम आबिदा परवीन को।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: शुभा मुदगल और साथियों की आवाजों में अभी आपने श्याम अनुरागी की ये रचना सुनी। इसे संगीत में ढाला था गौरव इस्सर ने। और इस रचना के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: रंग तरंग
0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स से WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
2: Women, we open their bank accounts.
3: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
2: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
0: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फॉरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का 8वां विमान काठमांडू पहुंचा। तमिलनाडु में मदुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 तारीख है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच शाम 8 बजे दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 43 अंक गिरकर 74,722, जबकि निफ्टी 21 अंक गिरकर 23,411 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
6: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
5: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
6: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
5: पर रेरा तो शहरों में।
6: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
5: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
7: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

दत्ताराम के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे प्रदीप का लिखा ये गीत। युगल स्वर मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर के थे। फिल्म का नाम था जिंदगी और ख्वाब।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। इस संदेश से पहले आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम था कैदी नंबर 911। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीतकार थे दत्ताराम। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। दत्ताराम के संगीत निर्देशन में असद भोपाली का लिखा गीत है, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम राका।

इस अंतराल के बाद यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं दत्ताराम के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत, युगल स्वर लता मंगेशकर और मन्ना डे की फिल्म का नाम परवरिश।

यह आवाजें थी सुमन कल्याणपुर, मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम था फर्स्ट लव। गीतकार थे गुलशन बावरा और संगीतकार थे दत्ताराम।

0: प्यार हमको
1: प्यार अमर है हमारा, बोले ये दिल का इशारा।
2: ये स्वर है लता मंगेशकर और मन्ना डे की, फिल्म का नाम है संतान, गीत रचना हसरत जयपुरी की और धुन दत्ताराम की।

0: लता मंगेशकर और मन्ना डे को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था संतान। और इससे पहले हम आपको बता दें, आप सुन रहे थे टार्जन कम्स टू दिल्ली फिल्म का गाना। गाने वाले कलाकार आशा भोंसले और उषा मंगेशकर थे।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हम

0: हमारे
1: आमंत्रित कलाकार हैं
2: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
2: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
1: सुबह और शाम
2: 6:45 पर
1: सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संगीतकार दत्ताराम की कुछ संगीत रचनाएं।

चूहा भी आया बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

से मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू।

का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

0: आया बंदर भी आया छुन छुन करती आई चिड़िया
1: ग्यावस थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था अब दिल्ली दूर नहीं। गीत को हसरत जयपुरी ने लिखा था और धुन बनाई थी दत्ताराम ने।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गडले
2: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
4: दिल तो पागल है दिल दीवाना है।
5: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
2: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला।

0: अनुपम सिंह के साथ
1: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: फिल्म काला आदमी का गीत सुनिए, आवाज सुमन कल्याणपुर की, शब्दकार हसरत जयपुरी हैं और संगीतकार दत्ताराम हैं।
3: आँख मिला कर

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। कार्यक्रम का अगला गीत हमने सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म बालक से लिया है। गीत को पंडित भरत व्यास ने लिखा है।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में अभी आपने फिल्म बालक का ये गीत सुना और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। गीतकार हैं गुलजार धीनवी, संगीतकार दत्ताराम, स्वर मुकेश, सुमन कल्याणपुर, महेंद्र कपूर और साथियों के। फिल्म का नाम है श्रीमान सत्यवादी।

0: हो तुम चलते हैं दिल, सूरत पे नहीं जाते हम, इस दिल से परखते हैं दिल, इस दिल से परखते हैं दिल, सच कहने के आदि हैं हम तो सतवादी हैं।
1: जब इसके नहीं तो कुछ भी नहीं, तो कैसे कही
0: एक बात कहूँ वल्ला, ये हुस्न सुभान अल्लाह, जब नाम लिया जी दिल थाम लिया, तो कैसे कही
1: बस तुमने कदर की है, क्या खूब नजर की है,
2: दत्ताराम के संगीत निर्देशन में हम आपको अब इंदिवर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है डार्क स्ट्रीट, गायिका है सुमन कल्याणपुर।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश दत्ताराम का संगीत, शैलेंद्र के बोल, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। फिल्म का नाम है जब से तुम्हें देखा है।

0: इस दो गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। आज का हेलो फरमाइश प्रोग्राम रात 8 बजे के बजाय आप सुनेंगे शाम 4 बजे, तो सुनना ना भूलिए आज शाम 4 बजे हेलो फरमाइश प्रोग्राम। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। दिन का 1 बजने को है अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के तहत कल वोट डाले जाएंगे। 147 निकायों के करीब 4,700 वार्डों में हो रहे इस चुनाव में 18,266 उम्मीदवार मैदान में हैं। 45 वार्डों में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। इस चरण में 6 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 121 नगर पालिकाओं में मतदान होना है। इनमें जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और पाली नगर निगम शामिल हैं। इस दौरान 87,60,000 से अधिक वोटर्स प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इससे पहले कल शाम चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। आज प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान दलों को प्रशिक्षण देकर रवाना किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं स्वीप अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। इससे पहले कल पहले चरण के तहत वोट डाले गए। इस दौरान लगभग 76% मतदान हुआ। 162 नगरीय निकायों के लिए हुए चुनाव में 43,95,400 से अधिक लोगों ने वोट डाले। सबसे अधिक 91.98% मतदान प्रतापगढ़ जिले की अरनोद नगर पालिका में हुआ। वहीं सबसे कम 63.84% मतदान भीलवाड़ा नगर निगम में हुआ। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान सुचारू और शांतिपूर्ण रहा। इसी के साथ 20,600 से अधिक प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीन में बंद हो गया है। जोधपुर में भारत और जापान की वायु सेनाओं के बीच वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास किया जा रहा है। कल से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। इस अभ्यास में पहली बार जापानी लड़ाकू विमान भारतीय एयरबेस और वायु क्षेत्र में ऑपरेशनल मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। वीर गार्जियन का पहला संस्करण वर्ष 2023 में जापान में हुआ था। युद्धाभ्यास में जापान के मित्सुबिशी F2 लड़ाकू विमान और भारतीय वायुसेना के तेजस, सुखोई 30, MKI और राफेल हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वीर गार्जियन अभ्यास से ये तालमेल और मजबूत होगा। उन्होंने जापान वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भारत जापान रक्षा साझेदारी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये दोनों देशों के बढ़ते विश्वास और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डीग में पशुपालन विभाग की ओर से पशु औषधि विक्रय केंद्र शुरू किया जाएगा। विभाग की उपनिदेशक डॉक्टर भावना यादव ने बताया कि इन केंद्रों पर पशुओं के उपचार के लिए गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं बाजार की तुलना में कम कीमत पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके साथ ही पशुपालकों को मिनरल मिक्सचर, पशु आहार और अन्य जरूरी पशु चिकित्सा सामग्री एक ही स्थान पर मिल सकेगी। इससे पशुपालकों का समय और परिवहन पर होने वाला खर्च बचेगा। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिन दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भावनात्मक तनाव और कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे लोगों को समय पर सहयोग, समझ और उचित देखभाल की जरूरत होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति की बात धैर्यपूर्वक और बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनना उसे मदद लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फॉरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान कल काठमांडू पहुंचा। 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने DNA प्रोफाइलिंग उपकरण उपलब्ध कराए हैं।
महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच शाम 8 बजे दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

0: वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। आज का हेलो फरमाइश प्रोग्राम रात 8 बजे के बजाय आप सुनेंगे आज शाम 4 बजे, तो सुनना ना भूलिए। आज शाम 4 बजे हेलो फरमाइश प्रोग्राम सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए फिर से सुनिए विविध भारती।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

ये स्वर थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों के। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन और फिल्म का नाम था आपकी कसम। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म आपकी कसम में इस गीत में किस्सा है कि किशोर कुमार जी हंसते हुए कहते हैं, बजाओ बेटा जम के बजाओ, ईमानदारी से बजाओ। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसना तो बहुत अच्छा है, लेकिन बिना मतलब की हंसी अच्छी नहीं होती। हाँ, दूसरे का मजाक बनाकर हंसना ठीक नहीं होता, लेकिन कार्यक्रम में हंसना बहुत अच्छा लगता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का प्रसंग बहुत ही आकर्षक और रोचक है, कहीं गीत याद आ रहे हैं और हो सकता है ये गीत आप इस कार्यक्रम में शामिल भी करें। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चिर हरित मुस्कान बिखेरने वाली मंदाकिनी जी उनके व्यक्तित्व के अनुरूप विषय गान और मुस्कान भरी सुरीला सफर लेकर आ रही हैं, अत स्वागतम। वही एक श्रोता ने लिखा है कि नमस्कार, ये बात बिल्कुल सच है कि आपकी खनकती आवाज, प्यारी बातें सफर को बहुत सुहाना और मत भरे गीतों से बहुत ही रोमांचक बना देता है। आपका स्वागत है। गीतों में कुछ गुनगुना रहे हैं, आपने कुछ गीतों का जिक्र किया है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज गालू मुस्कुरा लो महफिले सजा लो। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में कुछ पल हंसने के लिए मिल जाए तो ये समझना चाहिए कि शरीर को फ्री का टॉनिक मिल गया है, यानी कि हम विविध भारती के श्रोताओं को सुरीला सफर प्रोग्राम में आज 1 से लेकर 2 बजे तक फ्री में हंसने का टॉनिक देने वाली हैं, उद्घोषिका।

0: एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर बहुत ही खूबसूरत है। आज के सुरीले सफर में गीत की शुरुआत में, बीच में या अंत में आ रही हंसी की बात तो होने जा ही रही है, वो तो होनी ही थी। लेकिन इसके अलावा एक और हंसी की बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी छोटी बहना कमेंट पढ़ते वक्त या बीच में या अंत में कभी कभी मंद मंद खिलखिलाहट के साथ जब हंस देती है तब लगता है कि हंसी से भरी फुलवारी हो, ऐसी प्यारी प्यारी न्यारी लगती है। ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके साथ में बज रहा है हमारा रेडियो भी, हंस रहा है। अच्छा एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती का सुरीला सफर है, सुहाना होता है शुरू 1 बजे रोजाना, यहाँ कब किसकी कमेंट पढ़ी जाए ये किसने जाना। अरे वाह, आपने तो किशोर कुमार का गाना ही लिख दिया है। एक श्रोता ने कहा है कि हमारी भावनाओं, परिस्थितियों और शारीरिक प्रतिक्रिया पर आधारित है। हंसी के विविध प्रकार हो सकते हैं, खिलखिलाना, ठहाके मारना, दबे हुए हंसना, मासूम हंसना, उपहास भरी हंसी, घबराहट वाली हंसी और सबसे प्यारी खुशी या आनंद वाली हंसी। सुर और शब्दों के साथ एक छोटी सी हंसी गीत को चार चांद लगा देती है और सुरीला सफर में आपकी आत्मीयता भरी हंसी दिल में घर बना लेती है। आज की अनुपम सुंदर थीम पर इतने सारे गीत याद आ रहे हैं कि 2 या 3 सुरीले सफर भी कम पड़ जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने लिख भी दिए हैं कुछ गीत, हो सकता है कि ये गीत इस कार्यक्रम में शामिल भी हों। चलिए हंसते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत सुनते हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं ये, अनुराधा पौडवाल और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज है। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।
1: ये क्या, लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
2: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
1: ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
2: हिंदी कविता है ना?
1: हाँ।
2: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
1: तुम और हिंदी कविता?
2: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। इंग्लिश।

0: किशोर
1: भूल गए
0: जाने मेरा नाम
1: अच्छा?
0: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
0: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
0: चार का मौसम
1: बेशरम।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि कभी कभी गानों में एक मासूम सी नटखटपन खुली होती है और जब किसी धुन के बीच में अचानक से कोई खिलखिलाहट या कोई प्यारी सी गुनगुनाहट सुनाई दे जाती है तो लगता है जैसे किसी ने सुरों के आंगन में आकर रंग बिखेर दिए हों। कहीं उस हंसी में कोई मीठी सी शिकायत होती है, कहीं दोस्तों की मस्ती, कहीं चाहत का इकरार और कहीं एक ऐसी बेपरवाह हंसी जो गीत को सिर्फ एक रचना नहीं बल्कि जिंदगी का जीता जागता लम्हा बना देती है।

बल्कि महसूस होने लगता है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गीतों की सुर लहरी का ऐसा जादू है कि पलकें नींद की दस्तक पर झपकती हैं और मगर मन को पंख और कल्पना को परवाज देते ये गीत की अनुगूंज पहरों पहर बनी रहती है। गायकों के दिव्य स्वर से रचा बसा कोई भी गीत रात को सोए कंदीलों तक को जगा देती है। ये है गीतों की ताकत, स्वर और लय अनादि है। हर गीत की मिठास जीवन की विविधता में प्राण फूंक देती है। गीतों के शब्द जितनी गहराई से मन को छूते हैं वो गीत उतना ही अक्षत और कालजयी हो जाता है। बहुत सुंदर इबारत हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि वाकई इन गीतों के बीच में हंसने के क्या मायने हैं, ऐसा वही महसूस करता है जो इन गानों से प्यार करता हो, मोहब्बत करता हो। अच्छा चलिए, दो सीधे साधे सवाल हमारी तरफ से आपके लिए कि आपको ऐसा कौन सा गीत पसंद है जिसमें गायक या गायिका की हंसी ने उस गीत की खूबसूरती और शरारत को आपकी दृष्टि में ज्यादा बढ़ा दिया है। कोई एक गीत का जिक्र आपको करना है, फिल्म का नाम, गाने के बोल के साथ। और हमारा दूसरा सवाल यह है कि क्या आपको ऐसी कोई घटना याद आती है जहां पर आप अपने परिवार वालों से या अपने दोस्तों से बात करते करते अचानक जोर जोर से हंसने लगे या खिलखिलाने लगे, या आपके दोस्त या आपकी फ्रेंड जहां कहीं भी आप खड़े थे अचानक एक खिलखिलाती हंसी आपके बीच आई और आप सभी लोग देखने लगे चौंक कर कि ये क्या हुआ। ऐसा कोई लम्हा आपको याद है? कम से कम शब्दों में बतानी है आपको ये घटना, छोटी से छोटी शब्दों में, यूं कह सकते हैं कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं की बातों को शामिल कर सकें। और आइए बढ़ते हैं शंकर जयकिशन के संगीत की ओर। हसरत जयपुरी के बोल हैं, किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है अंदाज। ये गीत तो हमें हंसने का मौका कई बार देता है ना?

देखा आपने कितना खूबसूरत गीत था जो हमें हंसा देता है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी इस वक्त मुस्कुरा तो रहे होंगे कम से कम, और कुछ लोग हंस भी रहे होंगे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इन गीतों में हंसी है, वाह वाह, आज तो हंसी की नाव पर हम सब मंदाकिनी जी के साथ गीतों की नदी में सैर करने वाले हैं। अच्छा, आप नाव की सैर कर रहे हैं मेरे साथ? चलिए, आप जिसमें खुश हैं हम तो उसी में खुश हैं। बस शर्त यह है कि हमें हंसते हंसाते हुए आज का ये सफर तय करना है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने पूछा कि हमें कौन सा गीत पसंद है, ऐसा कोई फिल्मी गीत जिसमें गायक या गायिका की हंसी ने उस गीत की खूबसूरती और शरारत को बढ़ा दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि जवानी जाने मन नमक हलाल का गीत, जो कि आशा भोसले की आवाज में, ये गीत हमें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लव स्टोरी फिल्म का गाना है कैसा तेरा प्यार कैसा गुस्सा है तेरा, और सारे शहर में आपसा कोई नहीं, ये गाना फिल्म बैराग का हमें बहुत अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मी गीतों में हंसी तो हमें खुश कर ही देती है, लेकिन आपकी मधुर आवाज में भी हमें हंसी सुनाई देती है जो मन को प्रसन्न कर देती है। क्या बात है, आपको सुनाई देती है मेरी हंसी? मैं एक श्रोता लिखते हैं कि दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना, इस गाने में बड़ी अलग अलग हंसी है, खांसी वाली हंसी भी है। मुझे सबसे बड़ी अच्छी हंसी दिनेश हिंगू जी की लगती है उनकी फिल्मों में। क्या बात है। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि जब गीतों में किसी गायिका और गायक की गीतों में शरारतें होती है तो गीत में खूबसूरती आ जाती है। खासतौर से हमें तो गायिका की शरारत अच्छी लगती है। हमारे फिल्मी गीतों में इस तरह के बहुत सारे गीत हैं जो शरारतों से और खूबसूरत बन गए हैं। शायद मेरी शादी का ख्याल, अच्छा तो हम चलते हैं, ऐसे बहुत सारे गीत है जहां पर गायिका हंसती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसना और खिलखिलाना सच में जिंदगी के सबसे खूबसूरत और अनमोल तोहफे हैं। जब हमारा मन खुश होता है तो दिल झूम उठता है और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हंसने से हमारे शरीर और दिमाग को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। खिलखिलाकर हंसने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है, रक्त संचार बेहतर होता है जिससे दिल की बीमारियां दूर होती हैं। हंसमुख बने रहने से इंसान हर मुश्किल परिस्थिति में उम्मीद नहीं खोता। जो लोग ज्यादा मुस्कुराते हैं लोग उनकी तरफ आकर्षित भी होते हैं और उनके सामाजिक रिश्ते मजबूत बनते हैं। इसलिए जिंदगी में चाहे कितनी भी भागदौड़ हो, हंसने और मुस्कुराने का कोई भी मौका हाथ से हमें नहीं जाने देना चाहिए। बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि थोड़ी सी मुस्कुराहट उधार दे दे मुझे जिंदगी, कुछ अपने आ रहे हैं मिलने की रस्म अदा करनी है। आजकल की भागदौड़ और तनावपूर्ण जिंदगी में होठों के पास आए हंसी क्या मजाल है। फिर भी हमें हर हाल में रस्मी तौर पर मुस्कुराना पड़ता है। बच्चे की तरह उन्मुक्त और खिलखिलाती हंसी न सही, फिर भी थोड़ा बहुत तो हंसा ही जा सकता है। आजकल घरों में लोग सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिविटी के लिए हंसती हुई मूर्ति या लाफिंग बुद्धा रखते हैं। क्या अच्छा हो अगर घर के सभी सदस्य थोड़ी देर साथ बैठकर हंस बोल लें। एक लाइन में हम कह सकते हैं कि मुस्कुराइए, आप विविध भारती के साथ हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर टैगलाइन दी है आपने कि मुस्कुराइए हंसिए आप विविध भारती के साथ हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हंसी भी कितनी प्यारी चीज है, न कोई भाषा चाहिए न कोई वजह, बस दिल में निकली एक छोटी सी हंसी सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। कुछ हंसियां पल भर की होती हैं लेकिन उनकी मिठास बहुत देर तक दिल में रहती है। शायद इसलिए कहते हैं कि खुशियां बांटने के लिए शब्द नहीं एक सच्ची हंसी ही काफी होती है। तो हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं कि हंसना बहुत मुश्किल काम है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हंसना इतना मुश्किल काम भी नहीं है जितना हमने इसे बना लिया है। क्योंकि हम तनाव अपने सिर पर ओढ़ लेते हैं, सारी परेशानियां सारे तनाव सारी मुश्किलात ओढ़े चलते रहते हैं और हंसना भूल जाते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि जिंदगी में अच्छे दिन भी हैं बुरे दिन भी हैं, रात भी है तो सुबह भी है। हम अपनी जिंदगी को किन अर्थों में लेते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है। आप हजार दुखों के साथ भी मुस्कुराकर जी सकते हैं, हंसकर जीवन को अपना कहते हैं ना कि बहुत ही सहज और सरल बना सकते हैं। देखिए इस गाने में दो सखियां किस तरह से एक दूसरे को छेड़कर ही हंस ले रही हैं। और ये हमारी जिंदगी में भी होता है कि जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, किसी अपने के साथ मिलते हैं तो हंसी मजाक करना पसंद करते हैं। आइए सुनते हैं शैलेंद्र के बोल, एसडी बर्मन का संगीत, गीता दत्त और आशा भोसले की आवाजें। फिल्म का नाम है इंसान जाग उठा। हम्म,
आपको भी बताना है कि आप भी कभी हंसे हैं ऐसे किसी अपने के साथ।

ये आवाजें गीते दत्त और आशा भोसले की थी। फिल्म का नाम था इंसान जाग उठा। तो देखा आपने कितनी खूबसूरत तरीके से हंसती हैं दोनों नायिकाएं, है ना। अच्छा, कभी आप हंसते हैं इस तरह से? बताइएगा हमें कि आप किस तरह से हंसना पसंद करते हैं या हंसना पसंद ही नहीं करते। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही मजेदार गीत चल रहे हैं, हम हंस रहे हैं और हमारे घर के जो पेंटर हैं, कलर कर रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं। सच में आपकी आवाज में भी हंसी छलक रही है। अच्छा, आपके घर में काम चल रहा है और वो पेंटर भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और हंस रहे हैं, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीत के बोल तो याद रह जाते हैं मगर उन बोलों के बीच गूंजी हंसी अक्सर पूरी कहानी कह जाती है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वैसे आपकी मधुर आवाज में हंसी की खनक मौजूद रहती है से हम अक्सर महसूस करते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी हमारी तारीफ करने के लिए। लेकिन यहाँ कार्यक्रम के बारे में आपको बताना है कि आपको कौन से गाने पसंद हैं, जिनकी तारीफ में आप कुछ लिखिए या उस हंसी के बारे में लिखिए जो आपको बेहद पसंद है। जैसे कि एक श्रोता ने लिखा था कि उन्हें दिनेश हिंगू की हंसी बहुत पसंद आती है। अच्छा, आपको भी कोई ऐसी हंसी पसंद आती होगी किसी नायक या नायिका की, अपने आस पड़ोस में या अपने घर परिवार में या किसी बच्चे की, है ना, खिलखिलाती कोई हंसी जो आपको आकर्षित करती है, उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, ये इस गीत के अंत में लता जी की खिलखिलाती हुई पावन और जादुई हंसी है जो दुनिया की अनमोल मोती है। एक महज एक हंसी नहीं, स्वर साम्राज्ञी के कंठ से टपका पावन नूर है, दिल थम जाए ऐसा सुरूर है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, विश्व में अलग अलग लैंग्वेज है लेकिन हंसी की एक ही भाषा है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप भी तो बहुत प्यारे हंसी वाले गीत सुनवा रही हैं अपनी सुंदर हंसी के साथ, क्या बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि पड़ोसन मूवी का गीत एक चतुर नार वाला गीत हमें बेहद अच्छा लगता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि किशोरदा के द्वारा गाए गए कुछ गीत जो हमें बहुत पसंद आते हैं, चतुर नार, बाबू समझो इशारे, आके सीधी गिरी दिल पे। अरे वाह, इसमें तो किशोरदा ने दो आवाजें निकाली है ना, ये गीत तो बहुत ही सुंदर है। एक श्रोता लिखते हैं कि सत्या फिल्म का गीत तू मेरे साथ है, तू मेरे पास भी है, गुलजार साहब के बोल, लता जी की आवाज, हरिहरन की आवाज। और इसी फिल्म का एक अन्य गीत है सपने में मिलती है कुड़ी मेरी, इस गीत में भी हंसी सुनने को मिलती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बेताब का गीत जब हम जमा होंगे, ये हमें बहुत पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे फिल्म चांदनी फिल्म का गाना टाइटल गीत जो कि चांदनी ओ मेरी चांदनी, और इसमें आपको यकीनन श्रीदेवी की जो हंसी है वो बहुत लुभाती है ना, क्योंकि इतनी खूबसूरती के साथ वो इस गीत में हंसती हैं और इस गीत को इतना खूबसूरत तरीके से उन्होंने गाया है कि हम सुनना बार बार पसंद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीतों में हंसी खोजना, वाह क्या बात है उद्घोषिका जी, आपका सादर नमस्कार, बड़ा रोचक विषय है आज का, और सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती सुरीला सफर पेज खोलने से पहले मैं अनुमान लगा रही थी कि आज आप ही आएंगी और ये देखिए आप आ भी गई। आपकी खनकदार आवाज का इंतजार रहता है, आज तो अलग ही प्रकार का आनंद रहेगा गाना सुनने में। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीत में हंसी आना ऐसा है जैसे किसी बेहद संजीदा पेंटिंग के एक कोने में किसी बच्चे ने चुपके से रंग बिखेर दिया हो, क्या बात है। ये हमें याद दिलाती है कि माइक के उस पार कोई मशीन नहीं बल्कि धड़कता हुआ इंसान खड़ा था जो गाते गाते उस लम्हे में खो गया। ये हंसी गीतों को अमर बनाती है क्योंकि सुर भले ही कानों को छूकर लौट जाएं लेकिन वो बेसाखता खिलखिलाहट सीधे दिल में उतर आती है, क्या बात है। हमारे श्रोता भी कितने शायराना अंदाज में अपनी बात लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सभी आपके साथ मिलकर हंसते मुस्कुराते हुए कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी खुशी जाहिर करेंगे, हंसना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है, सबसे ज्यादा फरमाइशी गीत भंवरे ने खिलाए फूली गाना आपको बेहद पसंद है। अच्छा, यहाँ लता जी जब हंसती हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो बहुत अच्छे गाने सुनने को मिलने वाले हैं जिसमें हंसी मुस्कुराहट सभी शामिल होने वाला है। मुझे लगता है एक गाना इसमें मुझे याद आ रहा है कि जय जय शिव शंकर, जिसमें बहुत ही हंसाया जाता है, और एक बात कहो गर मानू तुम, ये गाना भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखिए आपने इस गीत को पसंद किया और हमारा अगला गाना यही है हमारी लिस्ट में। आरडी बर्मन का संगीत है, गुलजार साहब के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम गोलमाल। बहुत हंसना हंसाना लता जी का इसमें भाता है ना, आप भी हंसिएगा ना इस गीत के साथ।

जी तो बताइए, गीत सुनने के बाद आप भी मुस्कुराए कि नहीं? और कभी कभी पता है ऐसा भी होता है ना कि हम खुद से ही बात करते हैं अकेले में और फिर मुस्कुराने लगते हैं या हंसने भी लगते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा बहुत बार, जब आप अकेले बैठे होते हैं या आराम कर रहे होते हैं या सोने जा रहे होते हैं तो कोई बात याद आ जाती है अपने दोस्तों की या अपने परिवार वालों की या किसी खास की, और हम अकेले में हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। आपके साथ कभी ऐसा होता है बताइएगा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि कटी पतंग का प्रसिद्ध गाना है मेरा नाम है शबनम और प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। ये गाना जो आशा भोसले की चुलबुली और नटखट हंसी गाने की शुरुआत और अलग अलग अंतरा के बीच पर जो नेचुरली पिरोई गई है वो बहुत अच्छा लगता है और जिसे महान गायिका आशा भोसले ने अपनी बेहतरीन आवाज में गाया है। बिल्कुल, ये गाना इतना मुश्किल है और उसमें हंसना तो और भी ज्यादा मुश्किल, लेकिन हाँ इसे आपने समझा सबसे बड़ी बात यह है। एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे खूबसूरत और प्यारी छोटे बच्चों की हंसी होती है। कहते भी हैं कि दूर है मंदिर तो क्या हुआ, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। क्या बात है। वे एक श्रोता लिखते हैं कि जब भी मेरी धर्म पत्नी और मैं किसी भी होटल की या बिल्डिंग की लिफ्ट में अकेले होते हैं तो फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत मेरे जीवन साथी जरूर सुनते हैं, सुनाता हूँ। धर्म पत्नी हंस देती है और कहती है झूठा कहीं का, और मैं भी हंस देता हूँ। बिल्कुल, जीवन में ये रोमांस होना बहुत जरूरी है। जब आप जीवन में कहीं न कहीं रोमांचित होते हैं, रोमांस रखते हैं, तो जिंदगी और भी आसान हो जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को दिलीप कुमार और लीना चंदावरकर पर फिल्माया गया गाना सारे शहर में आपसे कोई नहीं। आशा जी की हंसी बहुत ही प्यारी हंसती है और हम भी हंसते हैं, और क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, इसमें आशा जी की जो हंसी है वो बाकमाल है। बिल्कुल सही कहा आपने, फिल्म लव स्टोरी का जो ये गाना है बहुत ही चुलबुली और शरारत भरी हंसी है उसमें आशा जी की। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बहुत मजेदार है, और एक श्रोता ने कहा है कि मुझे तो काजोल की हंसी और मुस्कुराना, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे मेरी 8 महीने की बेटी की हंसी सबसे ज्यादा पसंद है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किशोरदा का गाना है चिल चिला के कजरी सुना, ये गीत सुनकर हंसी आई जाती है और इसके बोल भी बहुत शानदार है। वहीं एक श्रोता को हेमा मालिनी जी की हंसी देखने और सुनने में बहुत अच्छी लगती है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो हंसना बहुत पसंद है और सबको हंसाने में बहुत मजा आता है। स्कूल के दिनों में सब मुझे हंसमुख अजमेरा नाम से संबोधित करते थे क्योंकि सभी को मैं अक्सर हंसाया करती थी। बहुत अच्छी बात, जब भी तो कहते हैं कि हंसो और हंसाओ। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे इस सफर में। शंकर जयकिशन का संगीत सुनते हैं, हसरत जयपुरी के बोल हैं ये, आशा भोसले, मुबारक बेगम और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है आरजू। हाँ, इस गाने के आरंभ में ही हंसी आपको सुनाई देती है ना?

हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की थीम बहुत ही खूबसूरत है। गीतों के बीच गायक है गायिका की वो कुदरती और बेसाख्ता हंसी गाने में एक अलग ही रूह और ताजगी भर देती है। आज के इस खास शो में गीतों के बीच खिलखिलाती हंसी और छेड़छाड़ वाले कई सदाबहार नगमे आज आपके साथ हम सुनने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वार्तालाप वाले गीत तो बहुत अधिक सुने हैं, लेकिन उनमें खिलखिलाहट वाले गीतों को ढूंढकर उन्हें प्रस्तुत करने का प्रयोग ही अनूठा है आपका, और इस दृष्टिकोण से ही ये इबारत आपकी प्रशंसनीय है। और आगे आपने डैश डैश डैश और क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, और क्या। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे पतिदेव का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है, उनके 5 में से 4 बातें तो चुटीली ही होती हैं, अक्सर अकेले में उनकी बातें याद करके मैं हंस पड़ती हूँ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मधुबाला की मुस्कुराहट और हंसी बहुत खूबसूरत और कातिलाना लगती है। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मुस्कुराती हूँ मैं कई बार, और जब नींद से जाग जाऊं तो याद आता है कि अरे ये तो सपना था, बस इसी बात पे हंसी आ जाती है। वहीं एक श्रोता को आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया वाला गाना बहुत पसंद आता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैं आजकल अपनी बेटी के घर मैं हूँ, मेरी 2 छोटी सी नातिने हैं, दोनों आपस में खूब खेलती हैं, खूब खिलखिलाकर हंसती हैं और मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ। बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चों के साथ खिलखिलाना तो बहुत ही अद्भुत एहसास है ये। और आइए अब सुनते हैं आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के बोल, युगल स्वर आशा भोंसले और किशोर कुमार के। फिल्म का नाम है बुलेट। इसमें देखिएगा कहां हंस रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले।

0: अकेले
1: धड़कन को छेड़ा ना दिल से ही खेले, काश आज रात हम होते अकेले।
2: होते जो अकेले तो कयामत हो जाती, बाद में जो होता पर मोहब्बत हो जाती।
1: क्या सी तुम्हें बड़ा बेशरम है, देखो फिर आया हमें कर रहा है ये बोर कौन है।
3: अरे कौन है रे, कौन है रे?
2: ये तो मैं हूँ भाई, चोरी चोरी छुपके।

0: इधर है,
1: उधर है,
0: ऊपर है,
1: नीचे है,
0: कहाँ है,
1: यहाँ है,
0: अरे यहाँ तो कोई भी
1: नहीं है।
2: जी तो देखा आपने, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन सामने हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और लगातार इस सफर में हमारे साथ बने हुए हैं और हमें लिख भी रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गीत के बीच में सुनाई देने वाली ये हंसी जैसे किसी बंद किताब के पन्नों के बीच अचानक कोई मुस्कुराता हुआ फूल मिल जाए वैसी होती है। ये हंसी गीत का हिस्सा होकर भी गीत से कहीं ज्यादा कह जाती है। कभी प्रेम की शरारत, कभी मिलन की खुशी, तो कभी उस पल की अनायास खिली मासूमियत। सुर कानों तक पहुंचते हैं मगर ऐसी हंसी सीधे दिल में उतर आती है और बरसों बाद भी वही चेहरे, वही दृश्य और वही खूबसूरत पल याद आ जाते हैं। सुरों के इस सफर में हंसी की छोटी सी झनकार जैसे बीते हुए पलों की खिड़की खोल देती है और तब महसूस होता है कि कुछ गीत सिर्फ आवाजों से नहीं, मुस्कुराहटों से, खिलखिलाहटों से और भी यादगार बन जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, तो यादगार रहेगा आज का ये सफर। और अब इस सफर से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। जीवन एक निरंतर यात्रा है, इसमें हमें किसी एक उपलब्धि पर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हर बात से सीखते हुए आगे बढ़ते हुए और खुद को बेहतर बनाते हुए जीवन का सफर तय करना है। जो व्यक्ति

रुक जाता है, उसकी प्रगति भी रुक जाती है। जबकि जो निरंतर प्रयास करता रहता है, वो नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। जीवन में निरंतरता ही सफलता, आत्मविश्वास और विकास की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। कोई भी बड़ा लक्ष्य एक दिन में पूरा नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों को लगातार दोहराने से हासिल होता है। निरंतर और नियमित मेहनत से कठिन लक्ष्य भी आसान हो जाते हैं।

उसमें लगातार प्रयास करने से हमारा अपनी क्षमता पर विश्वास बढ़ता है, समय का सही उपयोग होता है, नियमित काम करने से टाल मटोल की आदत भी कम हो जाती है, हम चुनौतियों का सामना करना सीख जाते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने की शक्ति हमें मिलती रहती है, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है और इसमें निखार भी आता है। निरंतर सीखने और सुधार करने से हम मानसिक, सामाजिक और व्यवसायिक रूप से भी आगे बढ़ पाते हैं।

निरंतरता वो शक्ति है जो साधारण प्रयासों को असाधारण परिणामों में बदल देती है। यदि हम प्रतिदिन ईमानदारी और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते रहें, तो सफलता निश्चित रूप से हमें मिलती है। प्रकृति भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। नदियाँ कभी बहना नहीं छोड़ती, सूर्य हर रोज उदित होता है और ऋतुएं निरंतर बदलती रहती हैं। कभी सोचा है, यदि कोई नदी बहना छोड़ दे तो उसका पानी ठहर कर दूषित हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यदि मनुष्य प्रयास करना छोड़ दे तो उसके ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास का विकास रुक जाएगा। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, असफलताएं और निराशाएं हमेशा ही नया कुछ सिखा कर जाती हैं, भविष्य में बेहतर बनने का अवसर भी देती हैं। इसीलिए इसे अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, वही वास्तव में प्रगति कर पाता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब समाचार विस्तार से।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों तथा भारत एवं विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठक

0: विषय है पोटेंशियल टू इम्पैक्ट एजेंटिक एआई टोकनाइजेशन क्वांटम समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आज तीसरा दिन है। एजेंटिक एआई एंड द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन अ बिलियन यूजर नेशन विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन सुहिन कांत पांडे और यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन निलेकणी एजेंटिक एआई टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 1,60,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश

0: 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, बीएलओ और चुनावी साक्षरता क्लब ईएलसी के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
2: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि भी और कर्मभूमि भी रहा है गुजरात। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया है और उन्हें तमलुक संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए तमिलगा वित्तीय कषगम टीवीके के नेतृत्व वाले सेकुलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने धरपुरम से सत्यबामा और मधुरंतकम से मरगथम कुमारवेल को मैदान में उतारा है। विपक्षी डीएमके ने मधुरंतकम से पारंथमन और धरपुरम से एस सुगन्या को उम्मीद्वार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और 19 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,377 हो गई है। 5,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13,600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निरीश्री।
1: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा।

0: वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमरीकी डॉलर और 86 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 74,804 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक की बढ़त के साथ 23,443 पर था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अनिता विलियम से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं, प्रस्तावित रक्षा खरीद और दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक परिचालन सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत ने महिला हॉकी जूनियर विश्व एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मौके में आज भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई, जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मधुसिदा सुप्रिया और रोशनी एंड ने दो दो गोल किए। भारत 12 सितंबर को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेगा। अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में कल बेन शेल्टन का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम पर आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत यानी इस कार्यक्रम का पहला गीत पंडित भरत व्यास का लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ सुनिए। गायिका हैं लता मंगेशकर और फिल्म का नाम है बेदर्द जमाना क्या जाने।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था बेदर्द जमाना क्या जाने। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोंसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ, फिल्म का नाम जाली नोट। शब्दकार राजा मेहदी अली खान और संगीतकार ओपी नैयर।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। फिल्म काला पानी का दो गाना सुनिए, स्वर आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के, शब्द मजरू सुल्तानपुरी के हैं और तर्ज सचिन देव बर्मन की है।
2: दिल वाले हुए, अब तेरी गली तक आ पहुंचे।

तक आप। सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें। फिल्म का नाम एक फूल चार कांटे। बोल हसरत जयपुरी के हैं और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है बरसात की रात, गीत साहिर लुधियानवी का है और धुन रोशन की।

0: मैंने शायद तुम्हें
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गड्डी ले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: और आइए अब सुनते हैं नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की रचना, स्वर लता मंगेशकर और साथियों के। फिल्म का नाम है मुगले आजम।

लता मंगेशकर और सखियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था मुगले आजम, गीतकार शकील बदायूनी थे और संगीतकार थे नौशाद साहब, गीतकार शकील बदायूनी थे। और आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। ये आवाज लता मंगेशकर की है, फिल्म का नाम है बिंदिया।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था बिंदिया। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों की और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आरती, आज तुम भी हो तो मेरे साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: मंजरी, आपको, सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: और बताओ कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक।
1: आज हमारे क्या क्या विषय हैं?
2: विषय सीधे विषय पे आते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: तो आज हम विषय लेकर आए हैं घर की सफाई, क्योंकि त्योहारों का मौसम है मंजरी जी। तो ऐसा होता है ना कि जब त्योहारों का मौसम होता है तो साफ सफाई ये तो लगा ही रहता है, तो किस तरीके से हम घर की सफाई में लगते हैं और आसानी से सब लोग मान जाते हैं सदस्य घर की सफाई करने के लिए, या फिर नोक झोंक थोड़ी बहुत होती है, तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: बहुत अच्छा सा विषय है ना।
2: हम अपने श्रोताओं से कहेंगे ना कि वो लोग भी हमें बताएं कि उनके घर में जब साफ सफाई होती है तो सारे लोग अपने आप अपना परिश्रम करने को तैयार हो जाते हैं, या फिर कुछ कहना पड़ता है, नोक झोंक होती है, रूठना मनाना चलता है।
1: बिल्कुल। और इसी के साथ साथ उपयोगी टिप्स में बातें होंगे कि जब बनानी हो नई रेसिपी तो इसके अनुभव भी आप लिखें कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है या क्या तैयारियां करती हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और मुझे कुछ कहना में है कि बस 5 मिनट बनाम घंटों की बातें,
2: जो अक्सर देखने में आता है।
1: आता क्या, हम लोग खुद ही करते हैं। तो चलो हमारे सभी साथी छोटी-छोटी सी यादों को ताजा करेंगे
2: कि आपके आप ऐसे किस इंसान को जानते हैं या किसको जानते हैं, हो सकता है आपके पड़ोसी ही हो कि जो 5 मिनट कहते हैं बस सब हम जा ही रहे हैं, लेकिन फिर घंटों चलती रहती हैं वो बातें, तो उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही आज हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री के अंतर्गत जोधैया बाई बैगा, जो की कला क्षेत्र में प्रसिद्ध है, उनके बारे में हम बात करेंगे।
1: और आज है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बहुत ही गहन विषय है।
2: बिल्कुल।
1: लेकिन उससे पहले हम लोग सुनते हैं एक गीत।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो आरती आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के बारे में और आज हम एक ऐसे दिवस की बात कर रहे हैं जिसके साथ एक ऐसा शब्द जुड़ा है जिस पर बात करना आसान नहीं लेकिन बात करना बेहद ज़रूरी है। ये दिवस है आत्महत्या रोकथाम दिवस। आत्महत्या शब्द ही बहुत दुखद है और इसलिए इस बात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस जागरूकता इसे मतलब जागरूकता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और जब भी कभी ऐसी दिमाग में किसी के भी ये बात आती है कि हम अपने जीवन को समाप्त कर लें तो उनको सोचना चाहिए कि आपका जीवन जो मिला है जीने के लिए वो कितना महत्वपूर्ण है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक बार विचार मंथन करें फिर आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं, अपनी समस्याएं जो है वो किसी और को बता भी सकते हैं।
4: बिल्कुल। और इस दिवस को जागरूकता दिवस बनाने की शुरुआत हुई साल 2003 में और अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम संघ द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के सहयोग से की गई थी। और इस दिन का उद्देश्य है लोगों में जागरूकता बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बातचीत को प्रोत्साहित करना और जरूरत के समय मदद लेने के महत्व को समझाना कि ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हो जाएंगे अगर आप किसी की मदद ले लेंगे, बल्कि मदद लेने से क्या होता है ना कि हमारी जो समस्या है जो हम उसको उस समय हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं किसी परेशानी की वजह से, तो सामने वाला हो सकता है हमारी परेशानी का हल ढूंढ के हमें दे दे।
3: बिल्कुल आरती। और कभी कभी जीवन में परेशानियां इतनी बड़ी लगने लगती हैं कि इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है और ऐसे समय में सबसे जरूरी है कि आपस में बातचीत की जाए। अगर कोई व्यक्ति जो है लगातार उदास दिखाई दे और लोगों से दूर रहने लगे, अलग अलग सा अपने आप को रखे, निराशा की बातें करे या कहे कि वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा है, तो उसकी बात को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर के बच्चे हों चाहे कोई भी हो व्यक्ति आपके साथ का हो, हाँ मित्र भी हो सकता है, तो कभी भी कुछ ऐसा आपको या उदास भी आपको दिख रहा है तो आप उसकी उदासी को दूर करने के लिए उससे घुले मिले, उससे दिल की बात जानने के लिए आगे आइए जिससे वो अपनी बातों को आपसे कह सके और आप उसको ये विश्वास दिलाइए कि भाई तुम्हारी बातें मैं अपने तक ही रखूंगा, है ना।
4: बिल्कुल। और किसी को भी अगर कोई अपनी परेशानी आपको बता रहा है तो उसे डांटने या उसकी परेशानी को छोटा बताने के बजाय, कभी कभी ऐसा होता है ना कुछ लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, तो ऐसा करने के बजाय उसकी बात को धैर्य और ध्यान से सुनना चाहिए, उसे इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए कि वो अकेला नहीं है और हर परेशानी का हल शांति और समझदारी के साथ निकल सकता है। किसी की मदद करने के लिए हमेशा बड़े बड़े समाधान जरूरी नहीं होते, कभी कभी किसी की बात को ध्यान से अगर हम सुन लेते हैं ना तो वो ही बड़ी बात हो जाती है, या फिर हम उसके लिए कुछ थोड़ा सा समय निकाल लें, उसके साथ थोड़ा सा समय बिताएं और उसे ये महसूस कराएं कि वो अकेला नहीं है, तो बहुत मायने रखती है।
3: बिल्कुल सही बात है, ऐसे में साथ बहुत जरूरी होता है किसी का भी। और इसीलिए जब भी ऐसा लगे कि परेशानियों से जूझना मुश्किल हो रहा है, माता पिता परिवार के सदस्य शिक्षक मित्र या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से आप तुरंत बात करें। और अगर हमारी जानकारी में कोई मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो कुछ सरकारी व निशुल्क हेल्पलाइन सेवाओं का संपर्क भी किया जा सकता है।
4: बिल्कुल, आप संपर्क कर सकते हैं और आप इंटरनेट पर इसको सर्च कर सकते हैं। और साथ ही वर्ष 2024 से लेकर 2026 तक के लिए इस दिवस की आधिकारिक थीम तय की गई है जो कि है आत्महत्या पर धारणा को बदल, और जिसका उद्देश्य इसके इर्द गिर्द के सामाजिक कलंक को कम करना और खुलकर बातचीत को शुरू करना है, जिससे कि बातचीत होने से हमारा तनाव भी कम होता है और हम अपनी परेशानियों का हल भी आसानी से ढूंढ सकते हैं।
3: बिल्कुल। और हम लोग सुन लेते हैं गीत।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती, आज हम बात करने वाले हैं कहानी पद्मश्री की, जोधैया भाई बैगा, जो कला से संबंधित है और मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की रहने वाली। जोधैया भाई ने जीवन के 6 दशकों से अधिक समय तक बेहद गरीबी और कड़े संघर्ष का सामना किया। 60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद उन्होंने रंग और कूची थामी और देखते ही देखते कला जगत का एक बड़ा नाम बन गई।
3: बिल्कुल, और जोधैया भाई, जिन्हें लोग जोधैया अम्मा के नाम से भी जानते हैं, उन्हें बैगा चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है। वो आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाना माना नाम है। एक मजदूर से चित्रकार तक पहुंचने का जोधैया बाई का जो मार्ग था वो बहुत ही संघर्ष भरा रहा।
2: बिल्कुल, और जब जोधैया बाई के पति मैकू बैगा का निधन हुआ, उस समय जोधैया बाई के 2 मासूम बच्चे उनके साथ थे और तीसरी संतान गर्भ में थी। अपने बच्चों के लालन पालन के लिए मजदूरी करते हुए जोधैया बाई ने अपनी तीसरी संतान एक बेटी को जन्म दिया।
3: बिल्कुल, और बेटी के जन्म के साथ ही जोधैया बाई को कमजोरी ने घेर लिया। 3 बच्चों की जिम्मेदारी ने उन्हें अपने ही शरीर की कमजोरी के साथ लड़ने को विवश कर दिया था। परिणाम स्वरूप बेटी के जन्म के साथ ही वो एक बार फिर जीवन के रण में दुखों से संघर्ष करने के लिए उतर पड़ी थी।
2: और पीठ पर मासूम बच्ची को बांधकर जोधैया बाई गाय, भैंस, बकरी चराने जाती थी। जंगल में वापसी में लकड़ियां बिन कर लाती थी और जिसका बोझ भी उनके अपने सिर पर होता था। गांव में लोगों के घरों को लीपना, आंगन और दीवारों को गेरू से सजाना, खेत में मजदूरी करना, यही उनके जीवन की भाग दौड़ थी। यानी बहुत ही संघर्ष भरा उनका दिन था।
3: बिल्कुल, और संघर्ष से जूझ रही जोधैया बाई के जीवन में बदलाव तब आना शुरू हुआ जब आशीष स्वामी ने लोढ़ा गांव में अपना स्टूडियो जगन तस्वीर खाना खोला और स्थानीय लोगों को अपने यहां काम पर रखा, जिसमें जोधैया बाई का बड़ा बेटा भी शामिल था। एक दिन आंगन लीपने के लिए वो अपनी मां जोधैया बाई को स्टूडियो ले गया था और साथ ही जोधैया बाई ने अपनी ही शैली में उस आंगन को ऐसे लीपा और उसे गेरू और छुई मिट्टी से ऐसे सजा दिया कि उसे देखकर आशीष स्वामी इतना खुश हुए कि उन्होंने जोधैया बाई जैसी बुजुर्ग महिला से, और लेकिन साथ ही साथ वो उनसे काम कराने पर थोड़ा नाराज भी हो गए थे कि आपने इतनी उम्र दराज महिला से कैसे काम कराया। और इस दौरान उन्होंने सुरेश बैगा ने, जो उनके बेटे थे जोधैया बाई के, उन्होंने बताया कि उनकी माँ अभी भी मजदूरी करती हैं
2: और आशीष स्वामी ने उन्हें अम्मा करके संबोधित किया और कहा कि अब से अम्मा मजदूरी नहीं करेगी बल्कि चित्र बनाएंगी। जोधैया बाई ने बताया कि जब आशीष स्वामी ने उन्हें चित्र बनाने का काम दिया तो वे घबरा गई थी। उन्होंने पहले तो साफ मना कर दिया कि ये लिखने पढ़ने का काम उनसे नहीं हो पाएगा। तब आशीष स्वामी ने उन्हें उनसे दीवार पर चित्र बनवाया। बाद में लकड़ी और सूखे कुम्भड़े, लौकी और तरोई पर चित्र बनवाए। जब उन्हें चित्र बनाने के लिए कागज दिया तो वे डर गई कि कागज और रंग दोनों ही खराब हो जाएगा, लेकिन आशीष स्वामी ने उन्हें थोड़ा डांट कर चित्र बनाने के लिए कहा।
3: बिल्कुल, और जब गुरुजी की डांट पड़ने लगी तो 70 साल की आयु के करीब पहुंच चुकी जोधैया बाई किसी मासूम बच्चे की तरह अपने घर में छिप जाती थी और उन्होंने उनके जो गुरुजी थे उनके घर जाते और उन्हें जबरन अपने स्टूडियो ले आते। उनकी पेंटिंग्स में बैगा समुदाय की परंपराएं, लोक कथाएं, देवी देवता और विशेष रूप से प्रकृति, जैसे कि महुआ का पेड़, जंगली जानवर और पक्षी एकदम जीवंत रूप में दिखाई देते थे।
2: और उनकी बनाई पेंटिंग्स को देश विदेश में बेहद पसंद किया गया। उनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी भोपाल और दिल्ली के अलावा पेरिस, फ्रांस और मिलान, इटली जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहरों में भी आयोजित की गई।

0: उम्र कोई बंधन नहीं होता है।
1: बिल्कुल सही कहा आरती। और देखो जहाँ पर वो रह रही थी तो आसपास की जो चीज़ें उपलब्ध थी, जैसे तरुई बताया है उन्होंने, है ना, कुम्भड़ा है, तो इन चीज़ों पे वो चित्र बना रही थी, तो एक कहते हैं हाथ भी साफ हो जाता है और आपकी जो कला है वो धीरे धीरे निखर के सामने आती ही आती है। और जब उनके सोचो अगर चित्र वो देखो तो कैसा लगेगा ना कि कितनी सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं उसमें।
0: बिल्कुल। तो और कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हमारे पास ये साधन नहीं है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक बहाने की तरह से ली जा सकती हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर एक करने का जज्बा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
1: हम सोचते हैं ना कि पहले इतने सारे ब्रश खरीद के लाएंगे या हमारे पास पूरे रंगों का डिब्बा होना चाहिए, तो इसकी जरूरत नहीं। अगर आपके पास दो रंग भी हैं तो आप उससे भी अपनी कला को शुरू कर सकते हैं।
0: देखिए उन्होंने प्रकृति से ही कला को लिया, प्रकृति से ही रंगों को लिया और प्रकृति के सामान पे ही उसको उसका उपयोग किया।
1: प्रकृति में तो कितने सारे रंग हैं और कितनी सारी कला है। हम आसपास नजर दौड़ाएंगे तो लगेगा हम ये पत्ती भी बना लें, ये फूल भी बना लें, है ना। तो जब तस्वीरें अच्छी बन जाती है तो उनको लगता है कि भाई हम इसको अपने पास एकदम संभाल के रख ले, है ना। तो चलो इसी के साथ
0: सुन लें।

0: तो आरती तस्वीर को इतनी अच्छी होती है ना, लगता है कि उसको सीने से लगा के रख ले, है ना।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जब बात आती है कि घर में साफ सफाई की बात आती है, तो बस
1: हम
0: लगता है कि
1: सारी तस्वीरों को तो नहीं रख सकते ना सीने से लगा के।
0: सही बात है। और जब घर में साफ सफाई की बात आती है तो लगता है कि भाई शुरुआत कहाँ से की जाए, है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो हमारे जो श्रोता भाई लोग हैं, सखियां हैं, ये बहुत आसानी से हमें बता देंगे कि मतलब कहाँ से सफाई की जाए। तो हमारे साथी का संदेश हम उठा लेते हैं, लिखते हैं कि घर की साफ सफाई सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं है, वो रिश्तों का आईना है। जहाँ साझेदारी होती है वहाँ काम बढ़ जाता है और बोझ हल्का लगता है, लेकिन जहाँ इसे एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी समझा जाता है वहाँ धीरे धीरे नोकझोंक पनपती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि सफाई को ड्यूटी नहीं साझेदारी बनाया जाए। थोड़ी मदद, थोड़ी तारीफ और थोड़ा समय पर किया गया काम घर को भी साफ रखता है और मन को भी साफ रखता है। क्या बात आपने कही है ना।
1: बिल्कुल। एक और हमारे साथी जो कहते हैं कि घर की सफाई बिना नोकझोंक के घर के हर सदस्य की भागीदारी से होनी चाहिए। इस बात पर एक गुजराती मुहावरा भी है, झाझा हाथ रलिया मड़ा, मतलब एक हाथ के मुकाबले ज्यादा हाथ से काम सुंदर तरीके से और जल्दी पूर्ण होता है। इसके अलावा फिल्म नया दौर का गीत भी सही संदेश देता है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना।
0: बिल्कुल, सफाई करते समय ये गाना जरूर गुनगुनाना चाहिए जिससे एक एकता बने। और फिलहाल तो हम लोग एक अंतराल लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं।
2: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: अंतराल के बाद फिर सभी का स्वागत है और आरती कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो अगला संदेश क्या कहता है आरती, बताओ जरा।
1: अब हमारे एक श्रोता सभाई हैं जो हमारे साथी हैं, जो कहते हैं कि घर सिर्फ चार दीवारों से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के आपसी प्रेम से बनता है। एक साफ सुथरा घर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए सफाई को लेकर आपस में नोकझोंक करने के बजाय इसे एक खुशनुमा साझेदारी में बदले। जब पूरा परिवार मिलकर हाथ बढ़ाएगा तो घर का कोना कोना तो चमकेगा ही, साथ ही आपसी रिश्तों में प्यार की चमक भी बढ़ जाएगी।
0: क्या बात आपने कही है, बहुत अच्छी अच्छी सी बातें लिखकर भेजी हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि घर की साफ सफाई हो या रोजमर्रा के छोटे बड़े काम, कभी कभी इन्हीं बातों को लेकर घर में नोकझोंक हो जाती है, कभी भाई बहन में, कभी पति पत्नी में, तो कभी परिवार के किसी और सदस्य के बीच। और तुमने ये सब काम क्यों नहीं किया, या मैं ही सब क्यों करूं, जैसी बातें सुनाई दे जाती हैं। लेकिन हर नोकझोंक मन मुटाव नहीं होती, घर की साफ सफाई में आपसी सहयोग, समझदारी और प्रेम से काम आप लें और थोड़ी सी नोकझोंक में मुस्कान जोड़ दें और मैं की जगह हम को महत्व दें। भाई ऐसी अगर बातें होती है ना, तो बेचारे जो हमारे सामान होते हैं ना, वो बेचारे इंतजार करते हैं कि भाई ये लोग तो आपस में ही लड़े जा रहे हैं, कब हमारे पास आएंगे, कब हमको पूछेंगे, है ना। तो भाई ये चीज है कि आप मुस्कुराएं एक दूसरे के साथ और आपस में हाथ बटाएं, है ना।
1: और एक साथ हमें कितना समय भी, सोचिए कितना समय भी बिताने को मिलता है साथ में। हम लोग काम कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, हो सकता है वहां पे गाने चला के थोड़ी देर के डांस भी कर लें।
0: आरती, तुम्हारा ये जो तरीका है ना, ये बहुत अच्छा है कि गाने बजा लें, अपना सुने बढ़िया गाने और मन करे तो डांस करें। लेकिन ये नहीं कि आपने लेके झाड़ू चालू हो गया डांस करना, तो
1: थोड़ी देर चलता है,
0: इधर उधर फैल गई गंदगी, वो भी ना करें। चलो अगला क्या संदेश है हमारे साथी
1: जो लिखते हैं कि घर की सफाई हमेशा समझदारी और आपसी तालमेल से होनी चाहिए, क्योंकि नोकझोंक से सिर्फ मानसिक तनाव बढ़ता है और काम का बोझ कम नहीं होता। जब घर के सभी सदस्य मिलकर जिम्मेदारी बांटते हैं तो सफाई एक बोझ बनने के बजाय एक खुशनुमा पारिवारिक गतिविधि बन जाती है। पर कितना भी समझदारी अपना लो, नोकझोंक तो होना ही है। बिना नोकझोंक हुए, चाहे वो बचपन में भाई बहन के साथ हो या ससुराल में पति पत्नी हो, जब तक ये ना हो सफाई में मजा ही नहीं आता। ये बात तो सही कही,
0: बिल्कुल सही कहा। और एक कहावत लिखते हैं हमारे साथी, एक है कि सुंदर और स्वच्छ घर में ही खुशियों का वास होता है, लेकिन जब इसी घर में साफ सफाई की बात आती है तो अक्सर घरों का माहौल थोड़ा बदल जाता है। दिवाली की सफाई हो, वीकेंड का रूटीन हो, या रोजमर्रा का झाड़ू पोछा, घर की सफाई अक्सर परिवारों में दो ही मोड़ लेती है, या तो ये बहस और नोकझोंक की वजह बन जाती है, या फिर आपसी मेलजोल और साझेदारी का एक जरिया। तो भाई हम तो सफाई के मामले में ये कह सकते हैं कि जो छुट्टी का दिन हो उस दिन आप एक बैग ले लीजिए और बस जो चीज़ आपको, हर कमरे में जाइए, जो चीज़ आपको लग रही है कि हटा सकते हैं तो उनको उसमें रखते जाइए, और शाम होते होते आप देखेंगे कि आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी इकट्ठी कर ली हैं जो काम की नहीं है, बहुत टाइम से रखी हुई हैं, तो इस तरह से आप उनको हटा सकते हैं। तो और आप थोड़ा थक गए हों, ये नहीं कि लगातार काम ही करते रहिए, आपस में जाइए, एक चाय बना लाइए, पत्नी को पिला दीजिए, खुद पी लीजिए, अगर वो झगड़ा होते होते रूठ गई है तो उन्हें मना भी लीजिए, है ना। और मनाना है तो भाई ये गाना भी सुना देते हैं, अगर पत्नी रूठ जाए तो वो पत्नी के लिए, पति के लिए गा ले, और पति रूठ जाए तो पत्नी गा ले, तो ये गाना सुन लेते हैं, फिर हम आगे बातें करते हैं।

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: तो आरती, हमारी बातें चल रही थी ना, तो हमारे साथी एक लिख रहे हैं कि परंपरागत रूप से हमारे समाज में घर की सफाई का पूरा जिम्मा महिलाओं का या किसी एक ही सदस्य पर डाल दिया जाता है, और जब घर के बाकी सदस्य गंदगी फैलाने में तो वो आगे रहते हैं लेकिन समेटने के वक्त गायब हो जाते हैं, तब नोकझोंक की शुरुआत होती है। ये बात तो सही है कि हमारी सखियाँ बहनें सारा समेटती रहती हैं, उनके दोनों हाथ चलते ही रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आता है, बल्कि बच्चे तो और फैलाने लग जाते हैं। तो कहना चाहिए कि सबको सहयोग देना चाहिए, बच्चों को भी सिखाएं कि सफाई कितनी जरूरी है। आप जहां बैठते हैं, जिस कमरे में आप सोते उठते हैं वहां पर सफाई रखिए, और अगर जहां पर खाना खाते हैं टेबल है तो उस जगह आप उसकी सफाई करिए। तो छोटे छोटे काम बांट देने चाहिए सभी को।
6: और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि घर की सफाई, नोकझोंक या साझेदारी बड़ा अच्छा मुद्दा है। घर की बहन की नोकझोंक, बहन से नोकझोंक हो जाती है, वो कभी पोछा लगा देती है तो हम जाले साफ कर देते हैं, जब कभी बर्तन मांजती है तो हम उसका फोन चलाने लगते हैं। तब तो आपकी अच्छी तरीके से डांट पड़ती होगी।
5: सही बात है, फोन चला रहे हो काम
6: वो भी उसका।
5: और कई बार ऐसा मुंह से निकल जाता है कि हम इतने भूतों की तरह जुटे हुए, तुम लोग काम नहीं कर रहे हो साथ में, तो वो चीजें भी कभी कभी हंसी मजाक में भाई बहनों के बीच में निकल जाती है। तो हमारे साथी इसी तरह और लिखते हैं कि भाई जब घर की सफाई या नोकझोंक या साझेदारी की बात होती है तो मेरी पुस्तकें उनको वैसी लगती हैं, अजीब सी लगती है, और पुस्तकों की सुगंध उनको बदबू लगती है, मेरा रीडिंग रूम उनको कबाड़खाना लगता है, घर का माहौल ऐसा ही है, जोड़ी हमारी जमीन न जाने कैसे जानी, अब तो हम हैं अंग्रेजी तुम लड़की हिंदुस्तानी। और इस तरह उन्होंने गीत भी लिखा है कि भाई मुझे ये गीत सुना दीजिए। तो ये चीज तो बड़ी ऐसी चलती रहती है नोकझोंक घर में होती है सफाई के समय। तो
6: और साथ ही हमारे एक साथी जो लिखते हैं कि घर की सफाई, नोकझोंक या साझेदारी, मेरी छुट्टी का दिन हो और घर की सफाई का दिन हो तो मुझे सफाई का सामान पकड़ा देती है और ड्यूटी पर धर्म पत्नी मुझे, मतलब सफाई की ड्यूटी पर लगा देती है। अगर मैं आनाकानी करूं तो मुझे मेरी मनपसंद अदरक इलायची वाली चाय का लालच देती है और कहती है कि जितनी बार भी पियोगे बना दूंगी, और मैं राजी भी हो जाता हूं, भाई चाय मिलेगी तो करना ही पड़ेगा काम।
5: मेरी कोई अगर घर का इतना सारा काम कर रहा है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसके लिए एक कप चाय बना दें, उसको ताजगी महसूस होगी तो फिर वो और ज्यादा काम कर सकती है ना। और हमारे साथी लिखते हैं कि घर की साफ सफाई, नोकझोंक या साझेदारी, भाई वे घर अब कहाँ हुए जहाँ जब लोग ही फ्लैटों में रहने लगे हैं, नहीं अपितु मियां बीवी दोनों ही नौकरी पेशा होते हुए भी इस कल्चर से प्रभावित होने लगे हैं, फिर कहीं कोई कमी नजर भी आई तो उसके लिए दाई तो है ही ना। लेकिन ठीक है, हम किसी भी घर में रहें, चाहे वो फ्लैट में रहें, चाहे छोटे से घर में, चाहे बड़े से घर में, सफाई तो देखिए सब जगह ही होनी पड़ती नहीं,
6: और थोड़ा बहुत काम हमें अपने आप करना ही पड़ता है,
5: करना ही पड़ता है, वो कितना भी आप किसी से करवा लें, लेकिन एक बार तो एक रविवार को आपको जुटना पड़ेगा।
6: जो सफाई होती है, गहन सफाई तो हमें खुद ही करनी पड़ती है
5: ना। तो एक गीत सुनते फिर आगे बढ़ते हैं।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ।

0: सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: तो आरती, जो हम बात कर रहे थे ना, तो हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि हम तो यही करते हैं, गानों के साथ काम या फिर भजन के साथ खाना बनाना। क्या बात है, मतलब बहुत ही फिर तो स्वादिष्ट खाना बनता होगा, क्योंकि भक्ति के रस में डूब के अगर आप एक रसेदार व्यंजन बना रहे हैं
2: बिल्कुल,
1: तो उसका स्वाद ही अलग होगा।
2: वो हमारे जो मन की सोच होती है ना, वो हमारे खाने में भी आ जाती है।
1: बिल्कुल आ जाती है। और भाई, जब हम खाना वाना खा के जाते हैं, बाहर निकलते हैं, और या कोई घर पे आ गया तो बातें करने लग जाते हैं, देख रहे हैं कि भाई वो सामने वाला कितना बोल रहा है। तो जब किससे शुरू होते हैं ना, तो उनका अंत ही नहीं होता, एक दूसरे से बातें करते हैं। और जब खाते करते उन्हें बाहर छोड़ने जाते हैं, तो भी दरवाजे पे खड़े होकर के घंटों बातें चलती है। और कई बार सोच भी रहे हैं कि भाई अच्छा आप चलें, अरे रुकिए भाभी जी ये किस्सा और ये भाई साहब ऐसी बात, तो ये सब चलती रहती है।
2: बिल्कुल। और मंजरी, अच्छा ये चीज देखिए, अक्सर हम कहते हैं ना कि अच्छा वो आप थोड़ी देर बैठ जाइए ना, थोड़ी देर बैठ जाइए, नहीं नहीं बहुत हो गया, अरे 5 मिनट बैठ जाइए ना, नहीं नहीं बहुत हो गया, ज्यादा देर हम बैठ नहीं पाएंगे, हमें बहुत काम है, घर पे सारे काम पड़े हुए हैं, अब बैठेंगे तो फिर बहुत काम हमारे पीछे रह जाएंगे।
1: हाँ, अभी फोन भी आता होगा किसी का ना, ऐसी
2: और ऐसा कहने के बाद भी एक घंटा निकल जाता है।
1: कई बार तो जिसके साथ आप बातें करें ना, वो ये कहता है अरे छोड़िए आइए एक एक कप चाय और हो जाए, मतलब थोड़ा और बैठ लीजिए। तो उनको भी लगे, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमने तो मान लो सही में कहा या संकोच बस कह तो दिया, लेकिन सामने बोला हाँ चलिए बैठ लेता हूँ एक कप चाय पी लेता, तब पता चलता है कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही लंबे बातें खिंच गई है ना। तो हमारे साथी क्या लिखते हैं ये हम लोग देख लेते हैं, है ना।
2: एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि एक मिनट से चलते 5 मिनट तक की बातचीत की सीमा घंटों तक पहुंचाए जाने में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का अव्वल नंबर आएगा। उनकी बातचीत में घर से लेकर मोहल्ले तक के इतने सारे विषय जुड़े होते हैं कि बातें खत्म होने में घंटा भर समय भी कम पड़ता है, फिर ये बातें फोन पर हो रही हो या फिर आमने सामने।
1: भाई देखिए, इसमें दोनों लोग की बात करते हैं, महिलाएं ही नहीं, महिलाएं तो करती वो तो फेमस है। हाँ। लेकिन हमारे साथी लोग भी खूब ऐसी बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि घर से निकले बाहर चौराहे पे चले गए या कहीं भी खड़े होकर बात कर रहे हैं। महिलाएं तो चलो अड़ोस पड़ोस की खबरें लेकर, उनको पूरी खबर रहती है कि यहाँ क्या चल रहा है, इधर
2: पूछते भी है क्या बातें हुई,
1: और कई बार बहुत जानकारी भी मिल जाती है कि भाई इतने दिनों के लिए वो बाहर जा रहे हैं, तो सपोज आपने प्रोग्राम बनाया बाहर जाने का उसी दौरान, तो दो घर खाली रहेंगे, तो इससे पता चल जाता है कि भाई बगल वाला 15 दिन के लिए इस तारीख से जा रहा है, तो चलो हम थोड़े दिनों बाद चले जाते हैं। तो कभी कभी इस चीज का भी फायदा होता है, तो बात जरूर करिए, लेकिन हाँ भाई बहुत ज्यादा देर ना करके थोड़ी देर करिए। हमारे साथी क्या लिखते हैं कि 5 मिनट बनाम 1 घंटा कुछ लोगों की नहीं बहुत लोगों की आदत है, मेरी एक परिचित घंटा भर फोन पर बात कर लेती है और तब बोलती है अरे तुम तो आती ही नहीं, आओगे तब मिलकर अच्छे से बात करेंगे, फोन पर कितना बात करें, पड़ोस की चाची सास चचिया सास घंटों घर में बैठकर बात कर लेंगी, पर जब आप उन्हें गेट तक छोड़ने जाएंगे तो वहां भी खड़े खड़े आधा घंटा बात करेंगे। उनकी इस हरकत से मेरी सासू माँ कभी चिढ़ जाती थी, गेट पर खड़ा कर क्या बात करना, घर में ही आधे घंटा और बात कर लिया करो, अब कैसे कहा जाए कि आप अब जाइए भाई साहब, जब जाए तभी तो आदमी विदा ले उनसे। लेकिन पीछे से घर वाले जरूर परेशान होते हैं कि भाई तुम फिर वहां खड़ी बातें कर रहे हो या अड़ोस पड़ोस से बात करने लग जाओ, तो ऐसे सीन हमेशा देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या करें भाई, चल गई बातें तो चल गई,
2: चली जा रही हैं। और मैं एक श्रोता लिखते हैं कि भाई होने को तो ऐसा भी होता है, जो लोग नौकरी पेशा नहीं है उनके पास समय होता है, ये लोग आपस में ऐसा करें तो बात समझ में आती है, लेकिन जब ऐसे लोग किसी नौकरी पेशा लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगे तो ऐसे में वो बात करे या फिर नौकरी पर जाए, वो तब भी जब सामने वाला अपना कोई अपना ही हो तो आप उनको मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनको बुरा लग सकता है कि अब हमें जानना है निकलना है काम पर।
1: और एक लिखते हैं कि चाहे मोबाइल पर बातचीत हो या लैंडलाइन पर, मैं तो शॉर्ट में और टू द पॉइंट बात करना पसंद करता हूँ, ये मेरी आदत मेरी धर्म पत्नी की भी है। और एक लिखते हैं कि हम 6-7 सहेलियां पार्क के गेट पर आते जाते जब तक कि सुबह सभी बहुत बिजी रहती है, फिर भी खड़े खड़े बात करते रहे, फिर चलते हैं कहकर फिर कोई नई बात शुरू हो जाती है और 5 मिनट की बात 1 घंटे की हो जाती है।
2: बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि हमें घंटों की निरर्थक बहसों और फालतू की गपशप को अलविदा कहना चाहिए, इसके बजाय 5 मिनट की सार्थक बातचीत को अपनाना चाहिए, और जो हमारे समय की इज्जत करे, हमें कुछ सिखाए और जीवन को एक कदम आगे बढ़ाए।
1: और हमें एक गीत सुन लेना चाहिए।
3: यूं ही तुम मुझसे

0: तो भाई देखो, हमारी जो सखियों ने लिखे हैं कि उपयोगी टिप्स में लिखा है कि रेसिपी में लिखी सभी सामग्रियां, मसाले, सब्जियां, तेल आदि पहले से निकाल कर काउंटर पर रख लें। चॉपिंग पहले कर लें, सब्जियों को काटना, प्यूरी बनाना या सूखा मसाला पीसना, ये सारे काम गैस चालू करने से पहले ही पूरी तरह से कर लें।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: तो भाई हमें तो जाना ही पड़ेगा, तो कार्यक्रम से लेते हैं
1: बिल्कुल,
0: विदा सभी को, मंत्री वर्मा और
1: आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अंशी पाठ।
2: सखी सहेली।

0: सखी सहेली
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम श्रोताओं FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर अपराह्न के 4 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों पर आधारित फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आज आपके साथ विकास। कहिए साथियों, क्या हाल चाल है भाई। मौसम की बात करें तो बरसात के मौसम के बाद पारा तेजी से बढ़ रहा है और इंतज़ार है अब सर्दियों का, लेकिन सर्दियां भी दूर है। तो मौसम तो बदलता रहेगा, मौसम का मूड चेंज होता रहेगा, लेकिन आइए आज के इस कार्यक्रम में हम आपका मूड थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जी हाँ, कार्यक्रम हेलो फरमाइश में दिन भर की थकान के बाद सुकून के कुछ पल इस कार्यक्रम के साथ, और ये है आज का पहला फोन कॉल। हाँ जी, कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: जी सर, सर
0: हाँ बताइए कौन।
1: न्याज पेंटर बोल रहा हूँ, लोअरपुरा से। न्याज पेंटर पेंटर
0: हाँ पेंटर साहब बताइए, क्या पेंट करते हैं आप।
1: ये पुट्टी कलर काम करते हैं सर, मकानों में, बिल्डिंगों में। ठेके
0: अच्छा, ठेकेदार हैं या कारीगर हैं, मजदूर हैं, क्या हैं।
1: से भी करते हैं सर,
0: अच्छा
1: कारीगरी
0: अच्छा
1: से भी करते हैं
0: अच्छा क्या रेट है फिर पुट्टी की।
1: सर। 900 रुपये रेट है अभी आजरी की। कारीगर अगर कोई काम करता है तो वैसे ठेके पे तो आपकी मर्जी के हिसाब से ठेका होता है।
0: अच्छा,
1: बिल्कुल काम करते हैं सर, स्टाफ के साथ आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं सर, सब
0: कौन से प्रोग्राम पसंद आते हैं।
1: आते हैं सर, पूरा दिन आपका ये चलता रहता है, चिल्मी चैनल, सब प्रोग्राम सुनते हैं सर,
0: अच्छा,
1: एक भी मिस नहीं करते हैं।
0: एक भी मिस नहीं करते। तो बताइए
1: जी
0: आज
1: सर, सर
0: क्या सुनवा दें आपको।
1: फिल्म का नाम है गजल, गाने के बोल है रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है।
2: रंग

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी,
1: हाँ
0: हाँ जी,
1: तुलसीराम बोलो, क्या बोलो। बहुत
0: हाँ तुलसाराम जी, बताइए क्या हाल है आपके। कार्यक्रम हेलो फरमाइश में स्वागत।
1: बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा
0: क्या कर रहे हैं अभी?
1: मैं अभी खेती में लग रहा।
0: अच्छा, खेतों में क्या कटाई शुरू हो गई आपके?
1: हाँ, कटाई शुरू हो गई सा।
0: अच्छा, क्या क्या कटाई हो रही है, किस चीज की हो रही है अभी?
1: मूंग बाज रहा था।
0: अच्छा, मूंग कैसे हैं, ठीक हैं आपके?
1: हाँ, मूंग थोड़ी फलियां कम है, वो
0: अच्छा,
1: ठीक है।
0: और ठीक है आप? चलिए साहब,
1: आजा
0: बता दीजिए गाना कौन
1: है
0: सा।
1: गाना। किस
0: चलिए साहब, सुनिए आपकी और हमारी पसंद का।

0: हाँ
1: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
0: हाँ हेलो फरमाइश। एक
1: हाँ
0: गाना सुनना था। अनवर
1: बताओ, पहले नाम बताइए अपना।
0: हुसैन बोल रहा हूँ।
1: हाँ हुसैन साहब, बताइए क्या करते हैं आप।
0: मैं पियोन हूँ, कक्षा में चपरासी कॉलेज में हूँ।
1: बताइए। अच्छा,
0: जंगल लव का सुनना सर।
1: जंगल लव का कौन सा सॉन्ग?
0: हाँ, लेला ने कहा मजनू से, हीर ने कहा रांझा से, वही कह दे मुझे को तू आई लव यू।
1: अच्छा, चलिए सुनिए साहब अपनी पसंद।

0: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: गुड्डी बोल रही हूँ, जोधासी से। कुछ
0: हाँ गुड्डी, बताइए क्या करती हैं जोधासी में?
1: नहीं करते हैं, काम
0: कुछ नहीं करते हैं? स्कूल स्कूल नहीं जाते?
1: है
0: स्कूल नहीं गई आज?
1: ऐसा
0: क्यों?
1: ही कहता, काम करना था।
0: अच्छा, देखिए सब काम जरूरी होते हैं, स्कूल का भी जरूरी है, घर का भी जरूरी है। बताइए गाना कौन सा सुनेंगी आप?
1: ए वीर खजरा रुक थम के बरस, ए वीर खजरा रुक थम के बरस।
0: थम के बरस। चलिए सर, सुनिए
1: हाँ
0: अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो कार्यक्रम, हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: हाँ साहब, कौन फरमा रहे हैं?
1: फरमाइश,
0: कहाँ से? लोहारपुरा से बोल रहे हैं। बताइए क्या हाल है आपके? ठीक
1: बोल
0: हैं?
1: रहा हूँ। हाँ ठीक
0: बस बढ़िया हैं। और कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं हमारे?
1: है सर, आप सुनाइए। सभी आते हैं, हेलो फरमाइश,
0: अच्छा, सभी आते हैं। तो आज क्या सुनेंगे इस कार्यक्रम में?
1: हेलो वर्मन, आज उत्तेजा वाला गाना सुनाएंगे। सो गया ये जहां, सो गया ये जहां,

तो श्रोताओं, ये तो था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम, जिसे आप तक पहुंचाने में सहयोग दिया सीमा गोस्वामी ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल। और अब मैं विकास आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।

हेलो फरमाइश। अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों पर आधारित ये फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम। श्रोताओं, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। अपराह्न के 4:38 हुए हैं। लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। करते हैं शुरुआत गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी कलावती सोनी जी द्वारा भेजे गए सुविचार के साथ। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। सचमुच कैसे नादान हैं हम सब। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। आपके सुविचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच है श्रोता मित्रों, जीवन को जीने का हमारा दृष्टिकोण हमेशा संतुलित और परिपक्व होना चाहिए। सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। ग्राम बंगला माटिया बालूद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं, जल है तो कल है, वृक्ष है तो फल है। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी ने। मिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी और सुल्तान अंसारी, और शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज के प्रेरक प्रसंग में एक बार फिर से हम याद करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर को जब अंग्रेजी शासन का शिकंजा भारत पर कसता जा रहा था। हम आजादी के बहुत से अमर शहीदों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम तीन ऐसे नौजवानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, लगभग नहीं के बराबर। मित्रों, अगर मैं कहूं कि मात्र 18, 19 या 22 साल के तीन आजादी के दीवाने नौजवान अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित सरकारी भवन में घुस गए थे तो क्या आप विश्वास करेंगे? असंभव सा लगता है ना, लेकिन ऐसा हुआ। वे तीन जवान थे, बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। उन दिनों कोलकाता में अंग्रेजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दफ्तर था जो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। ये ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी वहीं बैठते थे। ये 8 दिसंबर 1930 की

0: घटना है। सामान्य दिन था। अंग्रेज अधिकारी अपने दफ्तर यानी राइटर्स बिल्डिंग में आ चुके थे और अपना काम कर रहे थे। महत्वपूर्ण जगह होने के कारण वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुरक्षा का घेरा तोड़कर बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता उस भवन में प्रवेश कर जाएंगे। लगभग दोपहर की बात है, वे तीनों युवा क्रांतिकारी भवन में घुस गए। उस दफ्तर में कई भारतीय भी काम करते थे, इसलिए उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों जैसा पहनावा पहना और अंदर प्रवेश किया। उनके निशाने पर थे लेफ्टिनेंट कर्नल एनएस सिम्पसन, जो जेलों में भारतीय राजनीतिक बंदियों के साथ कठोर व्यवहार के लिए कुख्यात माने जाते थे। और देखते ही देखते तीनों ने लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन पर गोली चला दी। कर्नल की वहीं मृत्यु हो गई। इसके बाद वही हुआ जो आमतौर पर होता है, राइटर्स बिल्डिंग के अंदर ही ब्रिटिश पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। तो श्रोताओ, आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या वे तीनों वहां से निकलने में सफल हुए। इसका उत्तर है नहीं। उन्होंने प्रण कर लिया था कि किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। वे समझ गए थे कि अब बच निकलना लगभग असंभव है। तो नवजवान बादल गुप्ता और बिनॉय ने स्वयं को गोली मार ली। बादल गुप्ता की वहीं पर मृत्यु हो गई। बिनॉय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1930 को उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके साथी दिनेश गुप्ता घायल अवस्था में पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला और 7 जुलाई 1931 को अलीपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। और अब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश ने इन तीनों की स्मृति को कैसे जीवित रखा। कोलकाता के बेहद प्रसिद्ध डलहौजी हाउस का नाम बदलकर बीबीडी बाग यानी बादल, बिनॉय और दिनेश रखा गया और एक स्मारक बनाया गया। श्रोताओ, एक बात बहुत स्पष्ट है, वो ये है कि हम इन क्रांतिकारियों के साहस और बलिदान को आभार के साथ याद करते हैं, लेकिन हिंसा को जीवन का रास्ता नहीं मानते। हम बस उस दौर के इतिहास को उस समय के संदर्भ में समझते हैं। तो श्रोताओ, जब हम बीडीडी बाग का नाम सुने तो केवल उसे कोलकाता की एक जगह समझकर नजरअंदाज न कर दें। हम जरूर याद करें इन क्रांतिकारी युवाओं को, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आजादी को केवल एक विशेषाधिकार की तरह ही नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व की तरह भी देखें, और जिन्होंने देश के लिए अपना आज दे दिया। हम उनके बलिदान को याद करके अपने आज को बेहतर बनाएं। तो श्रोताओ, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। आप 8800044559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बरसात और मेंढक। इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पशु पक्षियों और संपूर्ण जीव जगत का ख्याल रखना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए।
1: बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।
3: घास घास थोड़ी सी घास ले ले,
0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
4: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
3: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
4: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो, थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
5: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
6: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
1: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
7: तो बच्चों, सुना आपने, बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेंढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ,
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में रूस के एक भालू से जुड़ी एक घटना के बारे में बताया गया है और ये संदेश दिया गया है कि हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पूरी तरह से पहचानना चाहिए।
0: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है। सोचिए, जरा बताइए तो।
0: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
0: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही। लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में

0: रहने का अधिकार नहीं है, ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
1: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
0: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: और अब सुनते हैं एक सुंदर गीत।
3: फूल सी गुड़िया हमारी।

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी जनरल है। शाम के 5 बजे है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

मुझे फहरिस्त में मत ढूंढना कभी, हर बार जरा लीक से हट कर मिलूंगा। मुझे फहरिस्त में मत ढूंढना कभी, हर बार जरा लीक से हट कर मिलूंगा तुम्हें। FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, आज की शाम आपके साथ है आपका रेडियो फ्रेंड एंड होस्ट RJ महावीर कार्यक्रम युवावाणी में। इस 30 मिनट के सुनहरे सफर में आज हम बात करेंगे विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर, विशेषकर युवाओं के बारे में, और सुनाएंगे आपको आपकी पसंद के मन पसंद दग में स्पेशल सेगमेंट आपकी पसंद में। तो श्रोताओं, बात करते हैं आज की चर्चा से। श्रोताओं, आज है 10 सितंबर और आज का दिवस है विशेष रूप से हम सभी के लिए, मानव के लिए विशेष। कारण, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, अवसाद, अकेलापन, आर्थिक परेशानी, रिश्तों में तनाव और तो और विपरीत परिस्थितियां किसी को भी आ सकती है या हो सकती है। विशेष रूप से बात करते हैं युवाओं की, उनके जीवन को लेकर, करियर को लेकर, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही पेचीदा मामला है और बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है ये मुद्दा, क्योंकि युवा है जो करियर के बारे में सोचते हैं और कई बार वे लोग अवसाद का, डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है आपके परिवार, दोस्त और समाज की विशेष भूमिका, उन्हें सबल वातावरण देने में, उन्हें एक अच्छा वातावरण देने में, ताकि वे परिस्थितियों का सामना करना सीखे। आपके आसपास किसी भी व्यक्ति को मानसिक परेशानी हो रही हो तो उसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी सहायता उसके जीवन को बचा सकती है। और आज का दिवस यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से आज के दिवस को विशेष पहल के रूप में माना है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। एक छोटी सी पहल किसी के जीवन को बचा सकती है। बात करता हूँ केवल 10 सितंबर की नहीं, पूरे वर्ष भर की हमारे आसपास के वातावरण की, जिसके प्रति हमें संवेदनशील होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और तो और, हमारे युवा होने के नाते जागरूकता को बढ़ाकर किसी की भी मदद हम कर सकते हैं। बात करते हैं उपायों के अंतर्गत आत्महत्या को रोकने की, तो योग, व्यायाम, ध्यान, प्रेरक प्रसंग और तो और सामाजिक मेल जोल बढ़ाकर हम अपने मानव जीवन के प्रति सजग होकर अपने मानवता का परिचय दे सकते हैं और किसी के जीवन को हम बचा सकते हैं। बातें हमारी यूं ही जारी रहेगी, सुनते हैं ये नगमा।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम।
4: इतनी भी क्या जल्दी थी?
3: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
4: और ये
5: मेरी गुड़िया के नाम।
6: पर दादी, आपके नाम?
7: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
3: शुभ शुभ बोलो।
6: क्या
7: आरबीआई कहता है?
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: बात कर रहे थे हम विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की। श्रोताओं, ये बात कर रहा हूँ इसके अंतर्गत कि विपरीत परिस्थितियाँ किसी को भी आ सकती है, कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में हो सकता है, आ सकता है। बट उस समय महत्वपूर्ण भूमिका हमारी यह रहती है कि उस व्यक्ति की मानसिक परेशानी को समझकर नज़रअंदाज ना करें, और तो और हो सके तो मनोवैज्ञानिक या फिर अच्छे डॉक्टर से सलाह लें उनके लिए, जो आपके समाज या आसपास से जुड़े हुए व्यक्ति है। केवल 10 सितंबर ही नहीं, पूरे वर्ष भर हम अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक रहे, संवेदनशील रहे, और मानव होने के नाते मानव की मदद करें, तभी हमारा जीवन सार्थक रहेगा। श्रोताओं, कहा गया है, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारों। ऐसा आत्मविश्वास हमारे साथ होना चाहिए, हमारे अंदर होना चाहिए, ताकि जीवन की हर परिस्थिति का हम सामना कर सकें। बात करते हैं इसी प्रसंग के अंतर्गत एक छोटे से पक्षी की, जो हमेशा रहता है आत्मविश्वास से लबरेज, भरपूर। बात करते हैं मध्य प्रदेश के

राज्य पक्षी दूधराज की, जिसे इंग्लिश में और वैज्ञानिक भाषा में एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। जैसा नाम वैसा काम और वैसा ही उसका रूप। दूधराज जिस नाम से पता चलता है, दूध जैसा सफ़ेद धवल शुभ्र, जिसे आम भाषा में सुल्ताना बुलबुल, एशियाई दिव्य लोकी, कीटमार पतंगा और तो और इसे स्वर्ग का पक्षी भी कहते हैं। नर दूधराज का रंग दूध जैसा सफ़ेद होता है, चमकदार काला, और इसकी पूंछ शरीर से लगभग 4 गुनी लंबी होती है। कुछ नर लाल भूरे चेस्टनट के रंग के रूप में होते हैं, और खासियत इसकी यह है कि ये हवा में उड़ते हुए छोटे छोटे कीट पतंगों का शिकार करता है, मक्खियों का शिकार करता है। हमारे आसपास के वातावरण में ये हमें देखने को मिल सकता है, यदि हमें इसकी जानकारी है तो। बातें हमारी यूं ही जारी रहेगी, बरहाल हम सुनेंगे ये प्यारा सा नगमा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और आपको भी सुनाएंगे।

0: मंजिले से ज़्यादा मुश्किल है रास्ते, जहाँ खुद को समझना पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ी कठिनाई खुद की लड़ाई से है जो हमारे अंदर ही चलती रहती है। श्रोताओं, बात करते हैं अपने लक्ष्य को लेकर। खुद को या खुद के हालातों से लड़ना सबसे बड़ी जंग हो है हमारी। दूसरों को समझना सबसे सरल हो सकता है, आसान हो सकता है, लेकिन खुद को समझ पाना बहुत ही कठिन और मुश्किल, क्योंकि दूसरों को हम जज कर सकते हैं, लेकिन बात खुद पर आती है तो खुद को जज करना बहुत ही मुश्किल होता है। सालों लग जाते हैं अपने विचारों को परिपक्वता में लाने में, समझने में। बात करता हूँ रोजगार सूचना की, तो हमारे युवा साथी अभी बड़े अपडेट हैं अपने लक्ष्य को लेकर। तो ग्रामीण डाक सेवक के अंतर्गत यहाँ पर पद निकले हैं भारतीय डाक विभाग में, जिसके अंतर्गत कुल पद है 23,757, योग्यता 10वीं पास है और इसकी अंतिम तिथि 21 सितंबर 2026 है। श्रोताओं, ये तो बात ही रोजगार सूचना की, और आप इंडिया पोस्ट जो साइट है उस पर जाके रोजगार सूचना प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। बातें हमारी यूं ही जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: लीजिए अब सुनते हैं ये अगला नगमा।

बात करते हैं विशेष सेगमेंट यानी आपकी पसंद की ईमेल द्वारा। हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स आए हैं, संदेश आए हैं, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, संजय अंशु वर्मा। इन्होंने फिल्म गोरा और काला फिल्म की फरमाइश भेजी है, तो इनको सुनाते हैं इनकी पसंद का ये नगमा।

अगली फरमाइश हमारे पास पहुंची है मेहर नगर उमर खेड़ा महाराष्ट्र से, लिखने वाले हैं अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर और उनके सभी परिवारजन। बदलापुर मुंबई से लिख रहे हैं प्रणीता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, अर्जुन गवाणकर।

अगली फरमाइश हमारे पास पहुंची है, दुर्गा कॉलोनी हांसी हरियाणा से लिखने वाले राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू और उनके सभी परिवार वाले। इन्होंने धन्यवाद भेजा है पेशकश के लिए कि हमारी पसंद के गाने सुनाते हो आप, और बहुत बहुत तारी भरी शुक्रिया मेहरबानी भेजी है इन्होंने, धन्यवाद आपको। और ये फिल्म आराधना का नगमा सुनना चाहते हैं जो कि किशोर कुमार की आवाज़ में है, आइए सुनते हैं इनकी पसंद का नगमा और इन्हें भी सुनाते हैं।

हम क्षमा चाहेंगे, समय अभाव के कारण कुछ श्रोताओं की पसंद के नगमे हम सुना नहीं पाएंगे, जिनके नाम कुछ इस तरह से है: अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रजक, रजन रंजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और उनके परिवार वाले कटनी से लिख रहे हैं। फिल्म निकाह के नगमे की बात कर रहे हैं ये। और पश्चिमी सिंहभूमि चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, दिलीपि लिपि गोप, दीपाली गोप, इन्होंने फिल्म अग्निसाक्षी के नगमे की फरमाइश भेजी थी जो हमें सुना नहीं पाए, क्षमा चाहते हैं। और तो और महाराज कीर्तन पुरी, गोस्वामी लक्ष्मी देवी, गोस्वामी जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दीसा स्वामी, इन्होंने नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हमें फिल्म तेरे घर के सामने की फरमाइश भेजी थी। समय अभाव के कारण हम इनको नहीं सुना पाए, परंतु वादा करते हैं फिर सुनाएंगे। इसी वादे के साथ दीजिए अनुमति आपके रेडियो फ्रेंड आरजे महावीर को, करते हैं नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। लीजिए सुनिए गीतों भरी कहानी। इस कहानी का शीर्षक है अपना ही अक्स। वाचक एवं प्रस्तुति सहायक हैं रमा सोनी और प्रस्तुतकर्ता है अशोक कुमार गोयल।
1: श्रोताओं, गीतों भरी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है अपना ही अक्स। दोस्तों, इंसान सारी उम्र बाहर की दुनिया जीतने में लगा रहता है, लेकिन सबसे कठिन सफर अपने ही दिल तक पहुंच पाने का होता है। जब दिल से अहंकार, घृणा, लालच और असत्य हटता है, तब इंसान को हर चेहरे में अपना ही अक्स दिखाई देने लगता है। आज की हमारी ये गीतों भरी कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, हम सब की कहानी है।

बात राजस्थान के एक छोटे से कस्बे की है, जहां एक बूढ़ा फकीर रोज शाम को एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठता था। उसके पास न कोई दौलत थी न कोई बड़ा नाम था, फिर भी लोग दूर दूर से उसकी बातें सुनने आते थे। वह कहता था, जिस दिन तुम किसी अजनबी के आंसू पोंछ दोगे उसी दिन तुम्हारी इबादत पूरी हो जाएगी। लोग उसकी बातें सुनकर हैरान होते कि क्या फकीर की इस बात में भी कोई इबादत छिपी है। फकीर मुस्कुराकर कहता, खुदा को ढूंढने वालों पहले इंसान को ढूंढो। रूह की आवाज सुन, शोर में क्या रखा है, प्यार बांटते चल, नफरत में क्या रखा है। उसी कस्बे में अमन नाम का एक नवयुवक भी रहता था, देखने में सजीला जवान, भरा पूरा परिवार, अच्छी नौकरी भी थी उसके पास और अच्छा घर भी था। क्या नहीं था उसके पास, सब कुछ ही तो था, परंतु फिर भी न जाने क्यों उसका दिल बड़ा बेचैन रहता था। वह हर रात छत पर बैठकर खुले आसमान से पूछता, ए मालिक, सब कुछ होते हुए भी मेरे भीतर इतना खालीपन क्यों है? क्यों ऐसा लगता है कि मैं पल पल घुटता जा रहा हूँ? ऐसे ही कई सवाल अमन के जहन में चले आते थे। एक दिन उसकी नजर उस फकीर पर पड़ी। अमन उसके पास गया और सलाम करके पूछा, बाबा मुझे सुकून कहाँ मिलेगा? बाबा ने उत्तर दिया, सुकून खरीदा नहीं जाता बेटा, कमाया जाता है। कैसे बाबा? अमन ने पूछा। जब किसी का दर्द अपना सा लगने लगे, तब समझना कि सुकून तुम्हारे दरवाजे पर आ गया है।

अगले दिन अमन बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्ध महिला जिसके हाथ में एक भारी सा थैला था जिसमें साग सब्जी राशन और घर का कुछ जरूरी सामान था, अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ी थी और उसका सारा सामान रास्ते पर बिखर गया था। पैर में लगने से वो दर्द से कराह रही थी। आसपास खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। उनमें से ऐसा कोई नहीं था जो उसे सहारा दे सके या उसका सामान तक भी उठाने में मदद कर सके। तभी अमन फुर्ती से आगे बढ़ा और पहले उस महिला को सहारा देकर उठाया, पानी पिलाया और फिर उसके सारे सामान को उठाकर उसे उसके घर तक सुरक्षित पहुंचाकर आया। वृद्धा ने रास्ते भर में उसे ढेरों आशीर्वाद और दुआएं दी। वो बोली, बेटा तुम्हें हमेशा मुस्कुराने की वजह ईश्वर दे। उसी दिन पहली बार अमन को लगा कि किसी की मदद करने से मन सचमुच कितना हल्का और आनंदित हो जाता है। दोस्तों, अक्सर हम समझते हैं कि बड़ी बड़ी उपलब्धियां ही जीवन का अर्थ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार निस्वार्थ भाव से किया गया एक छोटा सा नेक काम भी वर्षों की बेचैनी और बेताबी को मिटा देता है। जो दिलों को जोड़ दे वही सबसे बड़ा धर्म है। मोहब्बत से जीना ही इंसान का सच्चा कर्म है। कुछ दिनों के बाद अमन पास के गांव में आयोजित एक सूफी संगीत संध्या में पहुंचा। वहां ना कोई बड़ा मंच था, ना कोई विशेष चमक दमक थी, बस एक चटाई, कुछ दिए और लोगों के चेहरों पर सुकून बड़ा था। एक दरवेश धीमे स्वर में कह रहे थे, जब तक इंसान अपने मैं को पकड़े रहता है तब तक वह हम तक नहीं पहुंच पाता। सभी ने हामी में अपना सिर हिलाया था। अमन ने पूछा, बाबा क्या ईश्वर तक पहुंचने का कोई छोटा रास्ता है? इस पर दरवेश मुस्कुराए और बोले, हाँ है, किसी रोते हुए को हंसा दो। अमन उनको अपलक देखता रह गया। बस इतना सरल है ईश्वर को पाना? वो सोचता रह गया। खुदा को ढूंढने निकले थे हम दुनिया की हर डगर, एक भीगा हुआ दिल मिला वही था उसका घर।

शाम को अमन फिर से उसी पेड़ के नीचे पहुंचा। फकीर पहले से ही वहां बैठे थे। उन्होंने अमन से पूछा, आज कैसा लग रहा है? अमन ने मुस्कुराकर कहा, पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं केवल सांसें ही नहीं ले रहा, बल्कि मैं जी भी रहा हूँ। फकीर ने आसमान की ओर देखा और कहा, बस यही जागरण है। जब दिल दूसरों के लिए धड़कने लगे तो समझो सफर सही दिशा में चल पड़ा है। सफर अपनी गति से चल रहा था। एक सुबह अमन अपने दफ्तर में बैठा था, तभी एक परिचित चेहरा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह था उसका दोस्त राघव। वही राघव जिसने कई वर्षों पहले लालच में आकर अमन की नौकरी को भी खतरे में डाल दिया था। अमन पर झूठे इल्जाम और बेईमानी के आरोप लगाकर उसका जीना मुश्किल कर दिया था। इस घटना के बाद से अमन का दोस्ती पे से विश्वास ही उड़ गया था। परंतु इतने वर्षों बाद राघव पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर चिंता और आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। काफी मुश्किल से बोल पाया था, अमन हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, बहुत दुख पहुंचाया है तुम्हें। अमन के भीतर पुराना दर्द फिर जाग उठा। जख्म पुराने फिर से हरे हो गए, कुछ भूले हुए दर्द फिर खड़े हो गए। मगर दिल ने धीरे से कहा, इतना मत सोच दोस्त, नफरत से कभी रास्ते बड़े नहीं होते।

दरवेश अमन को एक पुराने कुएं के पास ले गया। उसने पानी की ओर इशारा किया और कहा, देखो जब पानी शांत होता है तभी उसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। वैसे ही जब मन शांत होता है तभी इंसान अपने भीतर ईश्वर की झलक को देख पाता है। इस पर अमन बोला, लेकिन मेरा मन तो हर समय भागता रहता है। दरवेश ने उत्तर दिया, भागते मन को रोकने की कोशिश मत करो, सिर्फ उसे प्रेम में लगा दो। दिल में अगर करुणा और प्यार की शमा जलती रहेगी तो हर सांस इबादत बनकर निकलती रहेगी।

दोस्तों, हम अक्सर दुनिया बदलना चाहते हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि इसकी सबसे बड़ी शुरुआत अपने भीतर से ही होती है। वापसी के रास्ते में अमन ने देखा कि एक मजदूर सड़क किनारे बैठा था और जोर जोर से रो रहा था। उसके पास एक फटे कपड़े पर उसका छोटा सा बेटा लेटा हुआ था, जिसका बदन तेज बुखार से तप रहा था। हाथ में कैनूला लगा हुआ था, कोई ड्रिप भी थी जिसमें इंजेक्शन लगा हुआ था। अमन ने उस मजदूर से पूछा, क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? उसने बताया कि इलाज के पूरे पैसे जमा नहीं करा पाने के कारण अस्पताल वालों ने उसे और उसके बच्चे को बेड खाली करने को कह दिया था। इसी कारण वो अपने बच्चे के साथ बाहर बैठा अपनी गरीबी और लाचारी पर रो रहा था। अमन ने कारण पता लगते ही पूरे पैसे अस्पताल में जमा कराए और उसका इलाज फिर से चालू कराया। इलाज शुरू हुआ और मजदूर की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, साहब, आज आपने मेरे बच्चे को नहीं, मेरी उम्मीद को बचाया है। वो उम्मीद जो मैं ईश्वर से लगाया बैठा था, आज मेरे जीवन में आप भगवान बनकर ही तो आए हो। कहते कहते वे अमन के माथे पर हाथ फेरते फेरते हजारों दुआएं दिया जा रहा था। अमन ने पहली बार महसूस किया कि किसी की दुआओं का वजन किसी की दौलत से कितना ज्यादा होता है। दौलत तो कई हाथों में आती है जाती है, दुआएं जो मिलती है वही जिंदगी की कमाई होती है।

अमन उसी शाम फिर से फकीर के पास पहुंचा और उस फकीर से खुद की और अपने दोस्त की पूरी दास्तान सुना दी और फिर उसने पूछा कि अब इन परिस्थितियों का सामना मैं कैसे करूं। फकीर ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, अगर इस पत्ते को तुम पकड़कर ही रखोगे तो तुम्हारा हाथ कभी खाली नहीं होगा। अमन ने पूछा, इसका मतलब बाबा? फकीर बोला, बेटा नफरत ही ऐसी होती है, जब तक तुम किसी के लिए नफरत पकड़े रहोगे प्रेम तुम्हारे हाथ में नहीं आ पाएगा। कुछ पल की खामोशी के बाद वो बोले, किसी को माफ करना उसकी खताओं को भूल जाना नहीं, माफ करना अपने दिल को अनचाहे बोझ से आजाद करना है। अमन गहरी सोच में डूब गया, किसी ने क्या खूब कहा है, जिसने क्षमा का दीपक जलाया उसने अपना ही मन महकाया है, रंजिश का बोझ जिसने छोड़ दिया उसने ही जीने का मकसद पाया है। अगले दिन अमन राघव से मिला। राघव ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका रखा था। अमन उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैं बीते हुए कल को बदल तो नहीं सकता, लेकिन आने वाले कल को बेहतर जरूर बना सकता हूँ। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आज तुमने मुझे सिर्फ माफ नहीं किया बल्कि मुझे फिर से इंसान बनने का मौका दिया है। उस क्षण अमन के मन से वर्षों का बोझ उतर गया। उसे लगा जैसे भीतर कोई बंद दरवाजा था जो आज खुल गया है। दिल में मोहब्बत का दिया जब जलने लगता है, हर अंधेरा खुद ही पिघलने लगता है। जिसे हम अपना दुश्मन समझते हैं वह कभी कभी हमें बदलने भी लगता है।

उस शाम अमन फिर उस फकीर के पास पहुंचा। आज फकीर ने उसकी खुशी से चमकती आंखों में देखकर कहा, आज तुम्हारे चेहरे में वो सुकून देख पा रहा हूँ जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। आज लगता है कि तुम्हें तुम्हारी दुनिया मिल गई है। अमन मुस्कुराया और फकीर का हाथ अपने हाथ में लेकर चूम लिया। उसे अब समझ में आने लगा था कि ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता किसी तीर्थ से नहीं बल्कि दया, सेवा, प्रेम और क्षमा से होकर ही जाता है। न मंदिर में, न मस्जिद में, न ऊंचे आसमानों में, वो मिलता है हमेशा सच्चे और मेहरबान इंसानों में, जो बांट दे प्रेम बिना किसी उम्मीद के, वही रोशन होता है रब की पहचानों में। अमन ने सेवा और प्रेम का मार्ग चुन लिया था। उसके भीतर का अंधेरा धीरे धीरे उजालों में बदल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जीवन केवल सीख लेने का नाम नहीं बल्कि उन सीखों को कठिन समय में अमल में लाने का नाम है। समय बीतता गया, मौसम बदलते गए, बरसात का मौसम।

0: कस्बे में लगातार 3 दिन से बरसात हो रही थी। कई कच्चे और निचले इलाकों में पानी भर गया था। लोग अपने सामान और परिवार को बचाने में लगे हुए थे। लोगों के पास न राशन बचा था न सूखे कपड़े। हर जगह पानी पानी और कीचड़ ही कीचड़ हो गया था। अमन ने तुरंत अपने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, खाने के पैकेट्स, जरूरी दवाइयाँ और कपड़े लेकर उन जरूरतमंद लोगों तक भोजन पानी और अन्य सामान पहुंचाए और घरों से सुरक्षित उन्हें दूसरी जगह पर ले जाने का काम बड़े जी जान से करने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और लोगों की दुआएं उसके लिए जुबान पर आई। अगले दिन अमन फिर उस फकीर से मिलने पहुंचा तो देखा कि वहां केवल फकीर की पुरानी चादर, लाठी और एक कागज रखा था जिस पर लिखा था, जब इंसान हर चेहरे में अपने रब का नूर देखने लगे तब समझना कि उसका सफर पूरा हुआ। तुम मुझे ढूंढना मत, अब तुम मुझे हर उस मुस्कान में देखना जिसे तुमने कभी हंसाया है। रूह की राह में मंजिल नहीं, सफर ही इनाम है। जो बांटता रहे मोहब्बत वही सच्चा इंसान है। नाम मिट जाते हैं दुनिया से एक दिन, लेकिन नेकियां ही हमेशा जिंदा रहती है। नेकियां ही हमेशा जिंदा रहती है। समय बीतता गया। अब अमन हर रविवार कस्बे के बच्चों को पढ़ाता, बुजुर्गों की सेवा करता और जरूरतमंदों की सहायता करता। लोग पूछते, अमन यह सब करके तुम्हें क्या मिलता है? वह मुस्कुराता और कहता, पहले मैं खुशी ढूंढता था, अब खुशी मुझे ढूंढ लेती है, पूरा कस्बा।
1: अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी कहानी। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
2: मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रहे हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
3: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
2: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
3: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
2: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति शी 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये यात्रा ब्रिक्स सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से सोमवार तक राजधानी में ड्रोन और अन्य छोटे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत ये आदेश जारी किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह

0: कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप, वैज्ञानिक, उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारक एक मंच पर आएंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने दूरदराज और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में भरोसेमंद बिजली विकल्प उपलब्ध कराने में लघु जलविद्युत परियोजनाओं के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री नाइक ने आज भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी के पूर्वावलोकन कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में उल्लेखनीय बदलाव आया है। और खेलों में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। और भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में भी अपना स्थान पक्का कर लिया है। अब 12 सितंबर को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, ये है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। यह है फिल्म संगीत की पहली पेशकश अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल के मिले जुले स्वरों में फिल्म बेशर्म से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर, जिसमें आज के कलाकार हैं रामचंद्र गोयल और साथी। लीजिए सुनिए इन उन्हीं के स्वर में ये अगली भक्तिमय प्रस्तुति।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: अभी आप सुन रहे थे लोक

संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर, जिसमें आज के कलाकार थे रामचंद्र गोयल और साथी। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 6:30 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात होंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल। 147 निकायों में सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की जरूरत। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के मौके पर आज से राज्य में 1 महीने के जन जागरूकता अभियान की शुरुआत। और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी। जयपुर सहित कई जिलों में कल से बारिश का नया दौर शुरू होने के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होगा। 6 नगर निगम, 24 नगर परिषद और 117 नगर पालिकाओं में कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इनमें अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर नगर निगम, टोंक, बहरोड, डीग, दौसा नगर परिषद और भीलवाड़ा, पाली, सलुम्बर, डूंगरपुर, बारा और अन्य नगर पालिकाओं सहित 147 निकाय शामिल है। दूसरे चरण में कुल 4,774 वार्डो में मतदान होने वाला है। इसके लिए 9,758 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण के लिए कल शाम 6 बजे प्रचार समाप्त हुआ। उम्मीदवार घर घर जाकर वोटों की मनुहार कर रहे हैं। इस चरण के लिए 87,60,000 से ज्यादा मतदाता, 18,200 से अधिक उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुगम तथा सुचारू मतदान के लिए 54,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। उदयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। उन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व के प्रति मतदाताओं से अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है।
1: वोटर्स के लिए, पोलिंग पार्टीज के लिए जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज होती हैं, वो सब का प्रावधान वहाँ पर किया जा चुका है। जो पुलिस जाप्ता है वो भी निर्धारित मात्रा में, निर्धारित ब्रीफिंग के साथ में वहाँ पर तैनात रहेगा तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं वहाँ पर कर ली गई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आप सबके माध्यम से मेरी सबसे यही अपील है कि आप लोग कल आवश्यक रूप से अपना आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
0: इस बार घर घर जाकर पर्ची का वितरण नहीं किया गया है। मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर वोटर लिस्ट में अपना नाम खोज सकते हैं। इससे पहले कल पहले चरण में 162 निकायों में वोट डाले गए। मतदान 76% से ज्यादा रहा। भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने जीत के लिए रणनीति बनाते हुए अपने अपने प्रत्याशियों को सुरक्षित स्थानों पर रखा है। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत नगरीय निकाय संपन्न कराए जा रहे हैं। मतगणना 14 सितंबर को होगी। इसके बाद अध्यक्षीय पदों के लिए 15 सितंबर को लोक सूचना जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय

0: कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आज पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब अंतरिक्ष में कई देशों की गतिविधियां हो रही हैं, ऐसे में टकराव के स्थान पर सहयोग और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है। अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक भी ले जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने बताया कि इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ के समाज सेवा के कामों में उनके योगदान को भी याद किया। सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिगों की सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए सुरक्षा उपायों की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की सहमति दी है। इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अनुबंध करने से रोकने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि फेसबुक और स्नैपचैट सहित अन्य प्लेटफॉर्म 13 साल की उम्र से अकाउंट बनाने की अनुमति देते हैं, जबकि भारतीय कानून में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नाबालिग माना जाता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और निराशा तथा तनाव से जूझ रहे लोगों को बिना किसी डर के खुलकर अपनी बात रखने के लिए प्रेरित करना है। जयपुर की मनोवैज्ञानिक यशिका अरोड़ा ने बताया कि आत्महत्या एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है। अकेलापन और अवसाद होने पर अपनों से बातचीत करने तथा विशेषज्ञ से संपर्क कर आत्मघाती विचारों से बचा जा सकता है।
1: इस डे पर हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आजकल स्पेसिफिकली यूथ में, हर उम्र के बच्चों में पहचानना कि सुसाइड को कैसे रोका जा सकता है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स देखना अपने लेवल पर, एंड जब भी उन्हें मदद की नीड है तो मदद के लिए सही टाइम पर उन्हें पहचान कर पहुंचाना, उसे ये सपोर्ट और विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है कि हम आपके साथ हैं सिचुएशन में, एंड अगर कुछ भी आप ऐसा फेस कर रहे हो, अपने लेवल पर चीजें नहीं हैंडल हो पा रही, नहीं समझ आ रहा क्या करें, तो ऑफकोर्स सही समय पर एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एक साइकोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट करना बहुत जरूरी है। काफी सारी फ्री हेल्पलाइन केयर्स भी आपको मिल जाएंगी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे सुसाइड हेल्पलाइंस, तो इनसे स्टेप लेना बहुत जरूरी है।
0: विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के मौके पर प्रदेश में आज से विशेष अभियान की शुरुआत हुई। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष गायत्री राठौड़ ने बताया कि एक महीने के इस अभियान के दौरान मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और आत्महत्या की रोकथाम के लिए जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां होंगी। रैलियों, कार्यशालाओं, क्विज पोस्टर और निबंध प्रतियोगिताओं के साथ ही सोशल मीडिया के जरिए तनाव प्रबंधन और भावनात्मक मजबूती का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाएगा। राजस्थान संपर्क पोर्टल में दर्ज 60 लाख से अधिक प्रकरणों में से 59 लाख का निस्तारण किया जा चुका है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज सचिवालय में हुई बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने शेष लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने राजनिवेश पोर्टल और मिशन हरियालो राजस्थान की प्रगति की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ पौधरोपण के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 9 करोड़ 68 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। राजधानी जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में कल से बारिश की गतिविधियों का नया दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में कल हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, वहीं अगले दो तीन दिनों में दक्षिणी पूर्वी भागों में मॉनसून के फिर से सक्रिय होने के आसार हैं। 13-14 सितम्बर को कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं मध्यम से भारी बरसात का पूर्वानुमान है। बीकानेर संभाग में भी 13-15 सितंबर को छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश और जोधपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस बीच फिलहाल बरसात का दौर थमने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, झुंझुनू और चूरू सहित 9 से अधिक स्थानों पर दिन का पारा 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है। श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक समरसता का विराट उत्सव माने जाने वाले रामदेवरा मेले के लिए देशभर से श्रद्धालुओं की आवक जारी है। मुख्य मेला 13 सितंबर को भरेगा। इस बीच बाबा रामदेव की समाधि स्थल रामदेवरा के रास्ते में श्रद्धालुओं के पैदल जत्थे, ध्वज यात्राएं और जयकारें माहौल को भक्तिमय बना रहे हैं। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि मेले के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं।
2: श्रद्धालुओं को लेकर जिला प्रशासन ने सफाई, सुरक्षा, विद्युत, पेयजल, छाया, यातायात, पार्किंग, चिकित्सा, सूचना एवं निगरानी सहित विभिन्न व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है। मेला क्षेत्र को 4 जोन में बांटकर प्रत्येक जोन में करीब 225 सफाई कर्मी लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र में 7 सूचना केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेला क्षेत्र में 200 से अधिक नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही ग्राम पंचायत के 64 कैमरे पहले से ही संचालित है। वहीं मच्छरों एवं मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए वाटर बेस्ड केमिकल से मेला क्षेत्र सहित विभिन्न वार्डो में फॉगिंग एवं स्प्रे करवाया गया है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कल से मेला स्पेशल ट्रेनें शुरू करने का निर्णय लिया है। ये 3 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियां भगत की कोठी और श्रीगंगानगर से पोखरण के बीच 15-15 फेरे करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल 147 निकायों में सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की जरूरत। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के मौके पर आज से राज्य में 1 महीने के जन जागरूकता अभियान की शुरुआत। और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी। जयपुर सहित कई जिलों में कल से बारिश का नया दौर शुरू होने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अजय सिंह शक्तावत ने तैयार किया है। चित्तौड़गढ़ जिले में नगर निकाय चुनाव के तहत 3 नगर निकायों चित्तौड़गढ़, रावतभाटा और बेगू में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। निर्वाचन विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में लगभग 70% मतदान दर्ज किया गया। बेगू नगर निकाय में सबसे अधिक 84.36% मतदान हुआ। चित्तौड़गढ़ में 67.87% तथा रावत भाटा में 66.82% मतदान हुआ। तीनों नगर निकायों में लगभग 1,60,000 मतदाताओं में से 1,11,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दूसरे चरण के तहत कल निम्बाहेड़ा, बड़ी सादड़ी, आकोला और कपासन नगर पालिका में वोट डाले जाएंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान दल रवाना कर दिए गए। मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 1 दिवसीय प्रवास पर पिछले दिनों निम्बाहेड़ा दौरे पर रहे। उन्होंने अटल गौरव स्मृति समारोह में शिरकत की और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर 15 जिलों में 5,600 करोड़ रुपए से अधिक के 944 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत डेढ़ हजार गांवों को हर घर नल से जल की सौगात भी दी। इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा जीवन राष्ट्र प्रथम की भावना को समर्पित रहा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सहकारिता मंत्री गौतम दक, सांसद सीपी जोशी, निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी मौजूद रहे। बीते दिनों 18 देशों के 36 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चित्तौड़गढ़ पहुंचे। उन्होंने विश्व विख्यात चित्तौड़ दुर्ग का भ्रमण कर सांस्कृतिक विरासत को करीब से जाना। विदेश मंत्रालय की सार्वजनिक कूटनीति पहल के तहत आए इन इन्फ्लुएंसर्स ने कुंभा महल, विजय स्तंभ, जौहर स्थल, पद्मिनी महल सहित प्रमुख स्मारकों का अवलोकन किया। इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से चित्तौड़ दुर्ग की तस्वीर, वीडियो और अनुभव अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंचेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री गौतम दक ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़ ने राज्यपाल का संदेश वाचन किया। समारोह में स्कूली विद्यार्थियों ने सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 65 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पिछले दिनों जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने जिला पर्यटन और विकास समिति की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग सहित जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के समग्र विकास, पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने से जुड़े विषयों पर चर्चा की। बैठक में जिला कलेक्टर ने केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वीकृत देश योजना के तहत दुर्ग पर कराए जाने वाले विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही फोर्ट फेस्टिवल का आयोजन करने, दुर्ग मार्ग को हेरिटेज रोड के रूप में विकसित करने और दुर्ग स्थित कीर्ति स्तंभ पर भी फ्लड लाइट लगाने को कहा। इसके अलावा जिले के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों मातृकुंडिया, मैनाल, जोगणिया माता तथा सांवलिया धाम में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। सैनिक स्कूल का 66वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ पिछले दिनों मनाया गया। स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में भारतीय सेना के साउथ वेस्टर्न कमांड के वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट जनरल ने सैनिक स्कूल परिसर में बने स्मृति का पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सैनिक स्कूल की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
4: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव रा दूजा दौर रात काल सुमारे 7 बजे वोट पड़ेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में कहो वसुधैव कुटुंबकम री भावना ने धरतियों आगे अंतरिक्ष ताई ले जावण री जरूरत। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस रे मौके आज राज्य में 1 महीना रो जन जागरूकता अभियान शुरू करी जियो। और प्रदेश में घनखर ठोड़ा पारो चढ़ियो, जयपुर समेत कई ठोड़ा काल बिरखा ओजू शुरू है वन रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव रा दूजा दौर रा तेत काल वोट पड़ेला। 6 नगर निगम, 24 नगर परिषद और 117 नगर पालिकावां में काल सुमारे 7 से 6 बजे ताई वोट दियो जा सकेला। अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर नगर निगम, टोंक, बहरोड़, डीग और दौसा नगर परिषद सागे, भीलवाड़ा, पाली, सलुम्बर, डूंगरपुर और बारां समेत न्यारा न्यारा जिला री नगर पालिकावां रा चुनाव सारू काल वोट डालिया जावेला। दूजा दौर माए 4774 वार्डा माए भे वनवाड़ा चुनाव सारू 9758 मतदान केंद्र बनाई चिया है। इन चुनाव सारू काल सिंजा प्रचार रो काम पूरो फेक्यो हो। इन पाछे उम्मीदवार

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला सगला श्रोतावा ने आशा दाबाई का घना घना राम राम, और अदिति जी आपने भी मारा घना घना राम राम सा।
7: आशा बहन आपने भी घणो घणो राम राम, अर सुन बाला सगला श्रोतावा ने अदिति भट्टरो ने भरियो नमस्कार अर राम राम सा।
6: अर रामा श्यामा के साथ ही देखो आज के किसान वाणी कार्यक्रम में थोड़ी सी बात आपा करेला कि सितंबर को जो दूसरो सप्ताह हो चाहे वो शुरू हो गए और अपना काश्तकार भाई ने चाहे जी कि इस सप्ताह के मायने भी जो मोटा मोटा काम करबा का छे उन्हें टाइम सारू कर लियो ताकि आपकी फसल आपने सुरक्षित उत्पादन का रूप में मिल सके। और ई टाइम देखो आपा देख रहे छा कि कई जगह तो बरसात हो चुकी छे और कई जगह तो बहुत ही कम हुई छे, पर आप देखो कि खेता के मायने खरपतवार जो छे वो आपको पूरो आक्रमण कर रखियो छे।
7: जी सा, ये जो छे बिन बुलाया मेहमान होवे छे, आ जावे छे तो आ जावे छे पण काई करा, आपाने इसू राहत तो मिलनी छे और राहत पाबा के लिए आपाने खरपतवार नियंत्रण का छोटा मोटा सा जो तरीका छे वे भी अपनाना छे।
6: अदिति जी, खरपतवारों को नियंत्रण करबो एक तो सबसे ज्यादा जरूरी जी सुई छे कि अपना काश्तकार भाया फसल की बढ़वार के लिए और चोखा उत्पादन के लिए जो भी आप समझ लो कि रासायनिक कीटनाशक सुरक्षा के लिए या फिर उत्पादन बढ़ावा के लिए कोई भी खाद और उर्वरक छिड़काव और भुरकाव करे छे तो ये खरपतवार वहां को अवशोषण यानी कि वहां सोख लेवे छे, तो वे सारा जो पोषक तत्व होवे छे या जो जी सुरक्षा के लिए आप या चीजों को छिड़काव भुरकाव कर रहे छे वह फसल तक न पहुंच ये खुद ही उन्हें सोख लेवे छे तो वह नहीं मिल जावे छे और फसल जो छे वह जू की त्यू रह जावे छे, जीसू की माका जी का काश्तकार बहे छे वह ने घणो नुकसान उठानी पड़े छे। ई ताई टाइम सारू, समय सारू और समय पर खरपतवारों को नियंत्रण करनो खूब जरूरी छे क्योंकि वे आपकी खड़ी फसल ने खूब ही नुकसान पहुंचावे छे।
7: जी तो आशा जी, थोड़ी सी विधि आपने और अपना जो करसा भाईर बहन छे आने बताता चला, वहीं तो अपना करसा भाईर बहन खूब होशियार तो छे ही। तो देखो यांत्रिक विधि सु आपा खरपतवार पर नियंत्रण पा सका छा, सांस्कृतिक विधि सु और रासायनिक विधि जी आप बताया ही, और अगर यांत्रिक विधि की जी आपा बात करा तो निराई गुड़ाई करके खरपतवार ने आपा बाहर निकाल सका छा, ये सबसे आम तरीको छे। तो फसल की बुवाई का 20-25 दिन पाछे जितनी अपनी फसल अब हो ही गई छे तो एक टाइम तो 20-25 दिन पाछे और दूसरी बार 45 दिन बाद निराई करके आपा ने खरपतवार पर नियंत्रण पानो छे।
6: और अदिति जी देखो ध्यान रखबा की बात यह छे कि एक तो खर पतवार की पहचान करनो अपना काश्तकार भाया ने आनो चाहिए क्योंकि जद कोई चीज की आपा पहचान करेला जदी उको समाधान और निदान करेला, और दूसरी बात यह कि समय समय पर माँ का काश्तकार भाया ने खेत में जार उनको निरीक्षण जरूर से करनी चाहिए और जद निराई गुड़ाई करबा की बात आवे तो देखो श्रम भी में खूब लागे छे क्योंकि एक एक चीज ने एक एक खरपतवार ने चुन चुन हटानो बहुत मुश्किल काम छे। ई ताई जरूरी तो या भी छे कि जद बिजाई करो जावे जद भी ई चीज को विशेष ध्यान रखो जावे और जो सुरक्षित उपाय छे जो माँ का कृषि विशेषज्ञ टाइम टाइम पर बताता भी रहे छे कि कुन कुन सी सावचेतियां राखता हुआ अगर भुरकाव छिड़काव करो जावे बुआई करी जावे और कोई खेत बाड़ी का काम कराया जावे तो काफी हद तक आपा या खरपतवारा से बच सका जा, तो वह तरीका ने भी काश्तकार भाई ने जरूर अपनानी चाहिए जे। और जिया की आप बताया ही भाई ये तीन विधियां छे मोटा तौर पर जाको उपयोग कर भी खरपतवारा से बचो जा सके जे।
7: सही कह रहा छो आशा जी, आपा फसल की निराई गुड़ाई और सब चीजा की बात तो आपा सागे सागे करता ही रहवा, लेकिन आपने बीच में जो छे डॉक्टर अनिता पारिक जी आ गया छे कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का माध्यम से आपा कईया कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने अपनाता हुआ उपयोग और संभावना पे आपा जानकारी ले लिया जो कि आज का परिप्रेक्ष्य में अगर देखा तो घनी जरूरी भी छे, और करसा भाईर बहना ने तकनीक को तो घणो ज्ञान छे पर अगर वह तकनीक सही दिशा में अगर आपा काम में लेवा तो घणो आपा ने फायदो आर्थिक रूप से हो पावेलो और अगर आर्थिक रूप से आपना कर्जा भाई बहन मजबूत छे तो फिर तो वारा न्यारा ही छे। पा जानकारी लेवा आपने समझाऊ माइक
6: श्रोताओ। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर अनीता पारिक, आप कृषि अधिकारी राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर, और आज हम इनसे बात करेंगे कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयोग एवं संभावनाएं। सबसे पहले तो डॉक्टर अनीता पारिक जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
8: नमस्कार।
6: जैसे कि आजकल हम सुन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हर जगह आपको या हमें ये चीज सुनने में आती है, तो सबसे पहले तो हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी।
8: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी किसान भाइयों, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम हिंदी में बोलेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सरल शब्दों में कहे तो AI ऐसी तकनीक है, कंप्यूटर में जानकारी है, उन आंकड़ों का ये विश्लेषण करती है और उनकी समस्याओं को समझने तथा उनके निर्णय लेने में सहायता करती है। आज कृषि के सामने मौसम में बदलाव, पानी की कमी, कीट एवं रोगों का प्रकोप और मिट्टी में उर्वरता की कमी धीरे धीरे और बढ़ती उत्पादन लागत जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं। ऐसे समय AI किसानों के लिए एक अच्छी तकनीक बन सकती है। इसका उद्देश्य किसान की जगह निर्णय लेना नहीं है, बल्कि किसान को सही समय पर सही जानकारी देकर बेहतर निर्णय लेने में सहायता करना है।
6: डॉक्टर साहब, आजकल या कुछ समय पहले से भी हम देख रहे हैं कि हमें कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो हम जाके सीधा मोबाइल पे गूगल करते हैं और उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं और काफी हद तक पा लेते हैं। तो आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि ये जो गूगल और AI है, इसमें क्या कोई अंतर है या सेम ही है, क्योंकि आजकल गूगल के साथ AI मोबाइल पे जुड़ा हुआ भी है, तो विस्तार से हमारे श्रोताओं को समझाइए इन दोनों में क्या फर्क है।
8: गूगल मुख्य रूप से एक सर्च इंजन है, जैसे हम कोई भी अपना सर्च करेंगे, जो इंटरनेट पर जानकारी उपलब्ध है किसी भी टॉपिक पे हम सर्च करेंगे तो वो हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जबकि जो AI है उपलब्ध जानकारी और डेटा का विश्लेषण करता है और उसके अनुसार अपने प्रश्न का उत्तर या सलाह देने में अपनी सहायता करता है।
6: जी,
8: उदाहरण के लिए अपन देखेंगे, जैसे अपन गूगल से पूछते हैं कि गेहूं में पीला रोग क्यों होता है,
6: जी,
8: किस कारण से हो रहा है, तो उसे वेबसाइट या लेख या वीडियो उससे संबंधित जो भी है वो उस पे आ जाएगा।
6: बिल्कुल।
8: जबकि

0: एआई द्वारा किसान एआई पे ये करेंगे कि गेहूं में पीला रोग क्यों होता है, तो एआई अपने से और क्वेश्चन पूछता है कि इसकी फोटो भेजो, या फिर कौन से एरिया में हो रहा है, या किस परिस्थितियों में ये है, तो उस के अनुसार अपन इनपुट डालते हैं, तो वो उसका सही विश्लेषण करता है और संभावित जो समस्या है उसको समझाने में अपनी सहायता कर सकता है। हालांकि गूगल के कई उत्पाद भी एआई का उपयोग होता है, इसलिए दोनों को पूरी तरह अलग समझना भी सही नहीं है। और सरल शब्दों में कहा जाए तो गूगल हमें जानकारी खोज कर देता है, जबकि एआई जो उपलब्ध जानकारी है और उनके जो भी आंकड़े आज तक जो भी या उस विषय पे कोई भी कुछ काम हुआ है उस सब का विश्लेषण करके प्रश्न जो होते हैं उनका उत्तर देने में हमारी सहायता कर सकता है।
1: जी, यानी ये कहा जा सके कि आज का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो काफी हद तक हमारे किसान भाइयों की और काश्तकार भाइयों की मदद करता है अपने जो खेती किसानी है उसको बेहतर तरीके से करने में और सूचनाएं उपलब्ध कराने में। अब
0: जी
1: चूंकि हमारे किसान भाई हैं और सीधे सीधे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हैं, तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि फसल उत्पादन में एआई का उपयोग किस तरह से किया जाता है, क्योंकि कई लोग सिर्फ सुन रहे हैं, अभी इसको प्रैक्टिकल कर नहीं रहे हैं, आजमा नहीं रहे हैं, थोड़ा संकोच खाते हैं, उनको ऐसे भी लगता है कि क्या पता एक जैसा डाटा या एक जैसी सूचनाएं इसमें फीड की गई है तो जो भी पूछेगा उसका एक ही सवाल एक ही तरह का जवाब मिलेगा, इस तरह के काफी संशय लोगों के मन में आते हैं, तो थोड़ा विस्तार से समझाइए ताकि इनका समाधान किया जा सके।
0: जी बिल्कुल, जैसे कि खेती किसानी में मिट्टी है, मौसम और पिछले वर्षों के जो आंकड़े हैं हमारे पास उसका विश्लेषण करके एआई किस एरिया में कौन सी फसल लेनी है, बुआई का कौन सा समय उचित रहेगा उसमें समझने में हमें सहायता कर सकती है। इसके साथ ही सिंचाई प्रबंधन में सेंसर से मिट्टी की नमी की जानकारी और मौसम और फसल की आवश्यकता के साथ तो उसका विश्लेषण किया जा सकता है, इससे पानी की अनावश्यक खपत कम करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही जैसे उर्वरक प्रबंधन है उसमें भी एआई उपयोगी है, जैसे खेत की मिट्टी और फसल की स्थिति की हम खेत की मिट्टी की जांच करवाएंगे, उसके साथ में जो आंकड़े हैं उसको अगर हम एआई पे अपलोड करते हैं तो उस आंकड़ों के आधार पर हमें कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है इसका आकलन किया जा सकता है। साथ ही जो ड्रोन और सेंसर से प्राप्त खेतों की तस्वीर हम अगर एआई को इनपुट के रूप में देंगे
1: जी
0: तो विश्लेषण करके कमजोर फसल वाले हिस्सों की पहचान भी हमें सहायता मिलती है।
1: तो मैडम, अब आपसे यही जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे काश्तकार भाई बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से खेती किसानी करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनकी अच्छी फसल उन्हें मिले ताकि आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो, लेकिन बहुत देखा गया है कि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी, सारी जानकारी रखने के बाद भी अपन समझ लें कि या तो जलवायु के कारण या कई प्रकार से, न कि शुरुआत में बल्कि खड़ी फसल में भी कीड़े और रोग फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो एआई किस प्रकार से मदद करता है इन कीट और रोगों की पहचान करने में ताकि फसल से सुरक्षित उत्पादन लिया जा सके।
0: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी एआई आधारित एप्लीकेशन जो है हमारे पास उनमें किसान फसल की पत्ती या पौधों की तस्वीर डाल सकता है, जैसे जो भी किसान भाइयों के यहाँ कोई रोग हो रहा है तो सबसे मेन होता है उसकी पहचान करना,
1: बिल्कुल
0: तो पहचान करेगा तो वो उसका मतलब ज्यादातर पता होता है कि, या फिर किसान जो कृषि विभाग के विशेषज्ञ उनको बताते हैं कि इस रोग को ये दवाई होती है। लेकिन
1: डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान बहन भाई हैं, काश्तकार भाई बहन हैं, वो खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन और बागवानी भी करते हैं, तो अगर हम एआई की उपयोग की बात करें तो किस प्रकार से पशुपालन और बागवानी को बेहतर बनाने के लिए एआई का उपयोग किसान बहन भाई कर सकते हैं?
0: जी हाँ, पशुपालन में और सेंसर और स्मार्ट उपकरणों से पशुओं की गतिविधि, भोजन, पानी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एकत्रित की जा सकती है। एआई इन आंकड़ों का विश्लेषण करके, जैसे हम उसको पशु का कोई भी बीमार है तो हम
1: जी
0: उसको उसके लक्षण बताएंगे एआई को, कि रोग हुआ है उसकी पहचान करेगा, और जैसे प्राथमिक रूप से हम उसको जो दवाई अभी देनी चाहिए या फिर
1: जी
0: उसको कौन सा चारा नहीं खिलाना है या उसको क्या प्राथमिक रूप से उपचार दे सकते हैं वो एआई हमारे मदद कर सकता है। इसी तरह बागवानी में भी फल और सब्जियों के रोगग्रस्त पौधों की पहचान कर सकते हैं, फल की गुणवत्ता की जांच कर सकती है और समय समय पर उनको कौन सा हमें खाद और पानी देना चाहिए, इसका भी हम एआई द्वारा हम पता लगा सकते हैं। साथ ही उत्पादन का अनुमान और सिंचाई प्रबंधन जैसे कार्यों में भी एआई का उपयोग किया जा सकता है।
1: बहुत ही बेहतर और बहुत ही बढ़िया जानकारी आप हमारे श्रोताओं को डॉक्टर साहब दे रही हैं। और जब हम खेती किसानी की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो उसमें कृषि में जो विपणन व्यवस्था है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इतनी मेहनत से जब किसान अपने खेत में अनाज उत्पादित करता है या कोई भी फसल का उत्पादन करता है, उसको सुरक्षित बाजार तक ले जाना और उसका सही मूल्य लेना, ये उसके लिए एक अपन कह सकते हैं कि बहुत ऐसा हो जाता है कि कई बार सब कुछ तैयारी के बाद भी अगर इसमें विपणन व्यवस्था में कोई कमी रह जाती है तो आर्थिक नुकसान काफी भारी हो जाता है, जिससे कि आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। तो एआई किसानों को बाजार और कृषि में विपणन व्यवस्था में किस प्रकार मदद कर सकता है, ये भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर बाजार में उसका मूल्य अपने को नहीं मिलेगा तो किसान को जो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो सकता। तो इसके लिए कृषि में केवल उत्पादन बढ़ाना ही हमारे लिए एक टास्क नहीं है, इसके अलावा भी एक मार्केटिंग या मतलब बाजार व्यवस्था होना भी बहुत आवश्यक है। जैसे अगर किसान की अपनी उपज है उसका उचित मूल्य मिलना बहुत जरूरी है। एआई द्वारा हम विभिन्न जो भी मंडी है उनके भाव, बाजार में उसकी मांग, मतलब हर परिस्थिति के अनुसार और हर क्षेत्र के अनुसार अलग अलग मांग और अलग अलग भाव होते हैं कृषि उत्पाद के, तो उसके अनुसार एआई द्वारा जो उपलब्ध आंकड़े हैं उनका विश्लेषण करके बाजार की स्थिति समझने में एआई सहायता कर सकती है। भविष्य में एआई किसान को क्या उत्पादन करे जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, कितना उत्पादन करे और उपज को कहाँ अपन बेचे, ऐसे निर्णयों में एआई सहायता कर सकती है। बाजार भाव अनेक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, इसलिए एआई की जानकारी को सलाह के रूप में लेना चाहिए और स्थानीय बाजार की वास्तविक स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार कुल मिला के जो है किसान भाइयों के लिए एआई बाजार की में कहाँ अपना उत्पाद बेचे वो भी बहुत अच्छी मदद कर रहा है।
1: डॉक्टर साहब देखो, यूं तो बातें बहुत सी हैं और संसाधन भी बहुत से हैं, पर कारगर चीजें वही होती हैं जो धरातल पे होती हैं और जिन्हें हमारे काश्तकार भाई जान पाते हैं, समझ पाते हैं और काम में ले पाते हैं। इसी तरह से अगर हम एआई की बात करें, सुनने में बहुत कुछ है, जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसान भाइयों और बहनों के लिए वास्तविकता क्या है, इसके लिए अगर हम बात करें हमारे क्षेत्र राजस्थान की, तो क्या महत्वपूर्ण शुरुआत हुई है एआई को लेकर, कितना किसान बहन भाई जान पाए हैं, कितना फील्ड में लोग उतरे हैं, कितना इसको समझ पाए हैं और कितनी ये सार्थक सिद्ध हुई है, बताएं।
0: जैसे कि राजस्थान में इसकी शुरुआत हो चुकी है, महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो है भारत विस्तार। इसका उद्देश्य एआई आधारित तकनीक के माध्यम से किसानों को कृषि संबंधित जो जानकारी है और ये जो सलाह है वो उपलब्ध करवाना है। इसके द्वारा जो मौसम है, मंडी भाव है, फसल प्रबंधन है, मिट्टी, कीट, रोग है, उनकी जानकारी एक साथ उपलब्ध करवाने में इस दिशा में ये काम कर रहा है। इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण नाम है एआई भारती, जो कि वॉइस बेस्ड जो एआई असिस्टेंट है किसान भाइयों, वो क्या करता है कि आप अगर उसमें कोई भी अपना सवाल या अपनी कोई भी जो कृषि से संबंधित वो सवाल पूछते हैं
1: जी,
0: तो ये बताता है कि उदाहरण दिखाता है कि एआई किसान को उसका जो उचित मतलब
1: समाधान
0: आपको देता है। एआई किसान सलाह और कृषि विस्तार के क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से उपयोग की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो राजस्थान के जो किसान भाई है उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा।
1: मतलब कहने का मतलब ये है कि कई किसान भाई ये सोचते हैं कि हम कम पढ़े लिखे हैं या ज्यादा, हमारी बहनें नहीं पढ़ पाई, नहीं ज्यादा समझ पाती, उनको अंग्रेजी नहीं आती, तो इसमें सबसे बेस्ट ये है कि आप बोलकर भी अपनी समस्या बता सकते हैं और उसका समाधान भी पा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप हमारे श्रोताओं को जानकारी दे रही हैं। अब जब हमारी बात समाप्ति की ओर है तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एआई नाम बहुत बड़ा है, बहुत विस्तारित है और इतना कि शायद हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसके अंदर क्या क्या होगा। तो हमारे जो छोटे और सीमांत किसान बहन भाई हैं वो ये सोचते हैं कि ये हमारे क्या काम का है, क्या हमारे लिए भी उपयोगी है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए कितना और कैसे उपयोगी है
0: एआई का लाभ। केवल बड़े किसान ही नहीं, सीमित जो सीमांत किसान है वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। जैसे अगर किसी के पास कम खेती है तो अपनी कृषि जोत है छोटी है सीमांत किसान है
1: जी
0: तो उसका बेस्ट उपयोग क्या हो सकता है
1: जी
0: तो वो एआई इसका बहुत अच्छे से आपको मतलब व्यापक उसका उपयोग बता सकता है। किसान अपने मोबाइल फोन से मौसम फसल कीट उसमें अच्छी से अच्छी अपन पैदावार कर सके वो बताने में एआई का बहुत अच्छा रोल है। और इसके साथ ही कृषि विभाग कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र किसान उत्पादन संगठन और तकनीकी संस्थाओं को मिलकर इसमें ये एआई पे अच्छा काम कर सकता है और किसानों को प्रशिक्षण भी देना उचित होगा।
1: डॉक्टर साहब बहुत ही विस्तार से आपने समझाया है एआई के उपयोग के बारे में और उम्मीद है हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी पसंद आया होगा समझ में भी आया होगा और ये जानकारी उनके लिए बहुत उपयोगी भी रहेगी। अब जब इतनी सारी बातें करी है तो एक और सवाल मन में ये आ रहा है कि जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है इतनी सारी जानकारियां इस पे है तो संभावित ही जब हम किसी काम को करते हैं शुरुआत करते हैं उसके बारे में जानते हैं तो कुछ एक चुनौतियां भी जरूर होती है जो हमारे सामने आती है तो आपसे जानना चाहेंगे कृषि में एआई की सबसे बड़ी संभावनाएं जो है उसके साथ साथ उसकी जो मुख्य चुनौतियां हैं वो क्या हैं?
0: जी मैं पहले बताना चाहूंगी कि कृषि में एआई की संभावनाएं बहुत व्यापक है
1: जी
0: पानी हुआ उर्वरक और कृषि रसायनों की आवश्यकता के अनुसार उपयोग फसल की बेहतर निगरानी कीट व रोग की शुरुआती पहचान या फिर मौसम की जानकारी और बाजार से संबंधित निर्णयों में हमने आपसे चर्चा की तो इसमें ये जो संभावनाएं बहुत हैं इसके साथ ही इसमें चुनौतियां ये भी है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो कई इतने साक्षर नहीं है या डिजिटल साक्षरता
1: की कमी है
0: कमी है और कई जो रिमोट एरिया हैं उनमें इंटरनेट और स्मार्ट उपकरणों की उपलब्धता भी
1: कम
0: अभी
1: है
0: इतना नहीं है।
1: जी
0: वैसे तो काफी आजकल सबके पास मोबाइल और स्मार्टफोन है पर कुछ एरियाज हैं उनमें अभी भी कमी है और स्थानीय आंकड़ों की भी उपलब्धता इसमें शामिल है ये जो हमारे पास चुनौती है। इसलिए किसानों को प्रशिक्षण व स्थानीय भाषा में जानकारी और आसान डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता किसान की जगह लेने वाली तकनीक नहीं है बल्कि किसान को ज्ञान और अनुभव आधुनिक जो तकनीक है उससे जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि किसान का अनुभव कृषि विज्ञान और एआई आधारित तकनीक के एक साथ काम करेंगे हम सब मिलके तो भारतीय कृषि या हमारी जो कृषि है उसको कृषि उत्पादन लाभकारी टिकाऊ और जलवायु के प्रति सक्षम बनाने में एआई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: श्रोताओं डॉक्टर अनिता पारीक कृषि अधिकारी राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित रहे और हमें बता रहे हैं कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयोग एवं संभावनाएं। इतनी बढ़िया और उपयोगी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
3: उतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं
3: मतलब
2: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी हाँ? माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी पहली वाली बात कहा
3: पर हम तो सब यही डाले हैं
2: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं
3: सच है
2: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं
3: ठीक है भाई मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: आशा बहन इतनी बढ़िया जानकारी आप दिलवाई डॉक्टर अनिता पारिक जीसू की कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करके आपना जो कृषक भाई बहन छे वह कहीं आपनी जो उपज छे उमे कहीं अंतर ल्या सके छे और कितनी बढ़िया वा में फसल पा सके छे तो आपको घणो घणो धन्यवाद आशा बहन।
1: और देखो सा अब इतनी सारी चोकी चोकी बात का डॉक्टर अनिता पारिक जी बताया भी तो इताई याने भी आपा गीत सुना वेला और अदिति जी आप भी सुनवा की इच्छा रांग तो ही होला
5: जी सा
1: और काश्तकार भाई तो सुनेला ही सुनेला तो आओ सा सगला ही मिलर सुनायो गीत।

0: अदिति जी, उम्मीद छे गीत तो आपने भी पसंद आयो होलो और कार्यक्रम सुनवाड़ा सगड़ा भाई बहना ने भी पसंद आयो ही होलो।
1: जी सर, मैं हामी भर दू छू वहां की तरफ से भी।
0: और अब स्टूडियो की घड़ी इशारो कर रही है कि आज को जी को कार्यक्रम छे किसान वाणी को वो पूरा हो तो जा रहे छे, पर जाबा से पहले आपने यही कहबो चावल ना काश्तकार भाया कि आप अबार को जो मौसम छे उनको भी पूरा ध्यान रखो, समय समय पर मौसम विभाग की जो सूचना हो वैसे वाने मद्देनजर रखता हूँ, यही आपका खेती बाड़ी का जो कार्यक्रम छे काम छे जो योजना छे उन्हें संपन्न करो ताकि आप कोई भी आर्थिक नुकसान न उठा पाओ और आपका जो खेती बाड़ी पशुपालन और बागवानी का जो काम छे वे समय सारू हो सके। और अब दिराओ आज्ञा आशा ने
1: और अदिति ने
0: चालान करा राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
4: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: ये जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम किसान वाणी। श्रोताओं, ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM 103.7 MHz पर। शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट एशिया कप 2026 के अंतर्गत दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम संयुक्त अरब अमीरात में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल।
1: धड़कन विविध भारती।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। फौजी साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है विनोद राठौड़, अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार हैं समीर तर्ज है, नदीम श्रावण की। फिल्म का नाम है दीवाना।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजों में। इस गीत को लिखा है समीर ने, धुन है आनंद मिलिंद की और फिल्म का नाम है सुहाग।

0: आप हैं विविध भारती के संग। इनसे मिलिए,
1: इनसे मिलिए। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विवेक तांबे से। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज हमारे साथ हैं महाराष्ट्र पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि सहायक पुलिस निरीक्षक साइबर क्राइम विवेक विजय तांबे। बहुत बहुत स्वागत विवेक जी।
3: थैंक यू सर, थैंक यू।
2: मान लीजिए कि कोई कुरियर वाला बन के आपके दरवाजे पर आता है और वो कहता है कि आपको एक कोड आएगा। अमूमन नॉर्मल केसेस में भी ऐसा होता है कि कई कंपनीज हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं, तो वो कोड आता है जो कुरियर वाले को देना होता है। इस तरह से भी कई लोगों के साथ साइबर क्राइम हुआ है जिसमें उनके साथ पैसे निकाल लिए गए, या व्हाट्सएप या मैसेजिंग के जरिए एक लिंक आई और उसको आपने क्लिक कर दिया। सपोज ये दोनों चीजें हो गई कि आपने ओटीपी भी दे दिया या लिंक क्लिक कर दिया, उसके बाद एहसास हुआ कि मुझसे तो कोई गलती हो गई, अब क्या किया जाए? फौरन तो पैसे नहीं निकलेंगे, तो बचाव क्या है?
3: कैसे है सर कि जैसे ही आपके साथ कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड होता है आपको इमीडिएटली 1930 पे कॉल करना है। वो इसके लिए कॉल करना है क्योंकि 1930 में कॉल करने के बाद फंड जो आउट हो चुका है आपके अकाउंट से और वो अब बढ़ रहा है जो भी साइबर क्रिमिनल है उसके अकाउंट की तरफ, क्योंकि वो मल्टीपल लेयर्स से उसके तरफ जाने वाला है, एक से दूसरे अकाउंट वॉलेट अकाउंट में। तो जैसे आप 1930 पे कॉल करते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, ट्रांजैक्शन डिटेल्स डालते हैं आप सारी, आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स डालनी पड़ती है। तो वो जो कंप्लेंट है उसके बैकेंड में बैंकर्स जो भी है, हर बैंक के एम्प्लॉयज है, वो लिंक्ड है, वो उस अमाउंट को, वो जो फंड का फ्लो है उसको ब्लॉक करना शुरू करते हैं और जिस वजह से जो फंड्स आगे बढ़ रहे हैं उसको होल्ड या रोकने की कोशिश की जाती है। तो जो अमाउंट रुक जाता है वो हम वापस विक्टिम को कोर्ट ऑर्डर के थ्रू रिटर्न भी कर रहे हैं, FIR रजिस्टर कर रहे हैं उसमें, और फिर जो भी कल्प्रिट्स है उसमें मोस्टली अदर स्टेट के ही, कोई साउथ इंडिया का विक्टिम है तो डेफिनेटली नॉर्थ इंडिया के अकाउंट्स यूज होंगे, कोई नॉर्थ इंडिया का विक्टिम्स है तो वो अकाउंट साउथ इंडिया के यूज करेंगे। तो जो भी लोकल पुलिस है जहां पे FIR रजिस्टर होता है वो वहां पे जाके उनको अरेस्ट करते हैं एंड फिर उनसे भी इन्वेस्टिगेशन करके उनके ऊपर चार्जशीट फाइल करते हैं। तो एक तरीके से ये पोर्टल से अकाउंट का पैसा बचता है और कल्प्रिट्स के ऊपर एक्शन भी लिया जाता है फिजिकली पुलिस जाके, इस तरीके से इसको प्रोसेस किया जाता है।
2: 1930 पर तो हम रिपोर्ट करेंगे ही, ये आपने बताया, लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं अपना फोन एरोप्लेन मोड पर डाल दूंगा या अपने वॉलेट्स को या मोबाइल ऐप के जरिए लॉग आउट हो जाऊंगा तो काम बन जाएगा, या अपने कार्ड्स को ब्लॉक कर दूंगा तो काम बन जाएगा, क्या ये प्रभावी तरीके हैं?
3: सर कैसे है, अब इस तरीके के मामले सामने आ रहे कि साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, कोई UPI ID जो है उसको अकाउंट के साथ लिंक कर देते हैं और बहुत बार विक्टिम्स को ये मालूम नहीं होता कि उनके अकाउंट के साथ UPI ID लिंक कर दिया है। अब जब UPI ID लिंक हो जाता है तो उसको OTP की जरूरत नहीं पड़ती, उसको सिर्फ MPIN डालना है जो पहले से ही उसने सेट करके रखा है। मान लीजिए आज आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, हफ्ते भर के बाद पैसा आया तो वो आउट कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है कि आपने बैंक को बोल के आपका अकाउंट फ्रीज करवा दिया, आपने सिम कार्ड चेंज कर दिया, आपने अननोन कॉल जो आ रहे थे उसको ब्लॉक कर दिया, ऐप अनइंस्टॉल कर दिया, सब कर दिया, मोबाइल फॉर्मेट मार दिया, ये सब करने के अलावा आपको बैंक में जाके ये भी चेक करना जरूरी है कि आपके जो भी बैंक अकाउंट है उसको कोई एक्सटर्नल UPI ID तो लिंक नहीं हुआ है। तो वो अगर लिंक हुआ हो तो आप बैंक को रिक्वेस्ट करते हो उसको डीलिंक करो। दूसरा, सिर्फ किसी के लिंक भेजने से या सिर्फ किसी के भेजे हुए लिंक को ओपन करने से आपके अकाउंट से पैसे नहीं जाने वाला।
2: ओके
3: हाँ, आप जब तक एक्सेस नहीं देते आपके फोन का, जैसे बहुत बार आपको बोला जाता है कि आप टीम व्यूअर या फिर उससे सिमिलर ऐसे कोई ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल करो जिससे आपके मोबाइल का एक्सेस किसी और को मिल जाएगा, जब तक उसके पास एक्सेस है तो उसको आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो भी चीजें हो रही है वो दिख रही होती है, रियल टाइम में दिख रही होती है। वो आपको इसी के लिए कहेगा कि 5 रुपए का ट्रांजेक्शन कीजिए ताकि वो देख पाए आप किस तरीके की एक्टिविटी फोन में कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद वाली एक्टिविटी वो शुरू कर देगा और OTP आना शुरू हो जाएगा। वो OTP उसको दिख रहे हैं जो आपके मोबाइल में आपको SMS

0: आ रहा है, तो कोई भी अननोन ऐप इंस्टॉल किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मत कीजिए, कोई भी एक्सेस आप किसी को दीजिए मत कि आपके फोन में होने वाली सारी चीजें उसको सामने वाले को दिखाई दे। तो ये अगर आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कोई अननोन ऐप नहीं डालेंगे, तो आप आपके साथ होने वाले फ्रॉड को बचा सकते हैं। दूसरा, रही बात ओटीपी की, तो ओटीपी तो सर बेसिक चीज है कि हमको किसी को भी नहीं देना है, ये तो सबसे पहला रूल है कि ओटीपी तो किसी को भी नहीं देना है, किसी कंडीशन में नहीं देना है।
1: और ये जो कुरियर वाले मांगते हैं तब,
0: देखिए सर कुरियर वाले जो मांग रहे हैं तो हमको उनको जो ओटीपी देना पड़ता है वो ऐप के जेन्युइन बेस्ड है क्या वो चेक करना जरूरी है। वो ओटीपी हमारे पास आ रहा है तो कहां से आ रहा है, वो हमारे बैंक का तो नहीं है। सामने वाला जो इंडिविजुअल मांग रहा है वो उसका, देखिए कोई भी इंडिविजुअल जो आपके पास आता है उसके डिटेल्स आपके ऐप में रहते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हो कि वो बंदा वही है। आजकल सारे ऐप ने ये फैसिलिटी दी, और वो आपसे वो डिस्क्लेमर भी लेते हैं कि वो जो इंडिविजुअल आपके दरवाजे पे आया है उसकी आइडेंटिटी आपको ऐप में दिखती है, तो वेरीफाई किए बगैर आप उसको ओटीपी नहीं देना है।
1: क्या कोई लिंक भेज के आपका फोन हैक करके आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकता है?
0: देखिए सर रिमोटली फोन हैक करना आसान चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लिंक ओपन करते हैं और लिंक ओपन करने के बाद कोई फॉर्म रहता है, जैसे आपका अगर HDFC बैंक में, एक्सिस बैंक में, SBI बैंक में अकाउंट है तो वो फॉर्म ओपन हो जाएगा, उनको ये जानकारी रहती है इनका अकाउंट किस बैंक में, आप उसको फिल करते हो, उसके सारे डिटेल्स डालते हो, तो मीनवाइल आपको एक ओटीपी जनरेट हो जाता है, वो सारे डिटेल्स बैकएंड में वो क्रिमिनल को दिख रहे जो आप उस पर्टिकुलर वेब पेज पे फिल कर रहे हो जो उस लिंक से ओपन हुई है। जैसे ही आप फर्दर डिटेल्स उसमें डाल देते हो तो सामने वाले के पास आपके सारी डिटेल्स है जो कॉन्फिडेंशियल है, जो बैंक ने आपको कहा है किसी को देना नहीं है, तो आपको बैंक को भी रिपोर्ट करना है कि मेरे साथ इस तरीके का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। एंड अगर आपने कोई डिटेल्स नहीं दिए है, आपने कोई भी ओटीपी या कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है, फिर भी अगर आपके अकाउंट से पैसे गए तो आप डिस्प्यूट फॉर्म बैंक में भर सकते हो, और RBI की गाइडलाइन से अगर आप वो उस क्राइटेरिया में बैठते हो तो आपको बैंक रिफंड भी कर सकता है, बट उसके लिए आपको बैंक में जाके डिस्प्यूट फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और जो भी रूल्स रेगुलेशंस RBI ने सेट किए हुए उसमें आप क्राइटेरिया में बैठते हुए नहीं वेरीफाई करना पड़ेगा, जो आपको आपके बैंक मैनेजर डिटेल्स दे सकते हैं।
1: अच्छा मुझे ये बताइए कि विवेक जी, इतना सारा आपका एक्सपीरियंस है, इतने सारे आप साइबर क्राइम सुलझाते रहते हैं, क्या अपना मोबाइल किसी जान पहचान के दोस्त, सहकर्मी, पड़ोसी या ट्रेन और प्लेन में यात्रा कर रहे साथ में लोग, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर अचानक मिल जाने वाले, अपने आप को मुसीबत में फंसा दिखाने वाले लोगों को देने के बाद कोई मुसीबत आ सकती है?
0: बिल्कुल आ सकती है सर। आपका फोन या आपका वाईफाई ये आपको किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए, किसी के भी हाथ में नहीं देना चाहिए।
1: कई बार लोग वाईफाई भी मांगते हैं कि जरा ये हॉटस्पॉट लगा दो।
0: आपके इस बात पे मुझे वही स्ट्राइक हुआ, क्योंकि अगर आप किसी को वाईफाई दे रहे हैं, उस वाईफाई को यूज करके कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, मान लीजिए आप किसी ने मेल कर दिया आपके इंटरनेट को यूज करके कि इस पर्टिकुलर मॉल में बॉम्ब रखा हुआ है, इस एयरपोर्ट पे बॉम्ब रखा हुआ है, या फिर कोई भी न्यूसेंस क्रिएट कर दिया, तो वो IP एड्रेस आपका कैप्चर होकर पुलिस आपके पास आएगी। तो पहले तो आपका जो भी इंटरनेट है मोबाइल का उसको बहुत सिक्योर रखिए, फ्री वाईफाई भी अगर आप यूज करें तो केयरफुली यूज कीजिए, और रही बात कि आपने आपका फोन किसी के हाथ में देना, इससे ज्यादा डेंजरस तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका जितना भी डेटा है वो आपके मोबाइल में है, एंड वो डेटा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बहुत सारे ऐसे ऐप्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे कि जो सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है, एक सेकंड के लिए आपका मोबाइल चालू हो गया, इंस्टॉल कर लिया, उसने मैसेज डिलीट कर दिया, जो भी डेटा है वो रियल टाइम में सामने वाले के पास जा सकता है।
1: अगर हमने अपना फोन किसी रिपेयर शॉप को दे दिया तब?
0: देखिए सर, रिपेयर शॉप में काम करने वाला इंडिविजुअल उसके अंदर क्या ऐप इंस्टॉल करेगा इसका गारंटी आप नहीं ले सकते, तो जो ऑथेंटिक शॉप्स है, सर्विस सेंटर्स है, वहां पे ही आपने आपका मोबाइल जो है वो रिपेयरिंग के लिए देना चाहिए, क्योंकि किसी भी मोबाइल में कोई वायरस डालना या ऐप डालना कोई बड़ी बात है नहीं। ऐसे भी ऐप्स है, लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि मेरे आईफोन है मेरे पास, एप्पल का फोन है तो उसमें, ऐसी चीजें किसी भी फोन में की जा सकती है। इसी वजह से आपका फोन प्रॉपरली पासवर्ड इनेबल्ड रखना, आपके जो ऐप्स है उनको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना ये बहुत जरूरी है, एंड वो आप करेंगे तो आपका डेटा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आज की तारीख में अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू है तो डेटा को वैल्यू है, तो आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, एंड आपके मोबाइल से कॉल की जा सकती है, मैसेजेस की जा सकती है, कुछ भी क्राइम हो सकता है, या आपका डेटा जो है उसको मिसयूज करके क्राइम हो सकता है। आपका ईमेल आईडी लॉगिन होता है, आपके सारे एप्लीकेशंस लॉगिन होते हैं, आपके सारे आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो आपके मोबाइल में होते हैं तो उसका भी मिसयूज हो सकता है।
1: तो अपना फोन सुरक्षित रखना सबसे पहली
0: बहुत जरूरी है। अच्छा पासवर्ड प्रोटेक्टेड वो होना चाहिए, 4 times 0 नहीं होना चाहिए।

0: लोग आजकल 4 टाइम आईफोन में पासवर्ड सेट करते जीरोस, सो पासवर्ड ऐसा रखिए, या तो डेट ऑफ बर्थ सेट करते तो ऐसे पासवर्ड रखिए, और उसको ऑफनली चेंज भी करना चाहिए, और किसी को आपका पासवर्ड जो है बताना नहीं चाहिए, वो बहुत जरूरी है जिससे हम आने वाले खतरे को टाल सकते हैं।
1: बिल्कुल। अब देखिए इतनी सारी बातें आपने बताई, तो एक गाना तो हम आपकी पसंद का सुनवा ही सकते हैं आपको,
0: होश वालों को नजर क्या सरफरोश।
1: क्या बात है, गाने आप बहुत शानदार सुन रहे हैं। सरफरोश फिल्म का ये गीत जगजीत सिंह की आवाज में है।

0: हम बात कर रहे हैं मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर साइबर क्राइम विवेक विजय तांबे जी से, और बहुत सारी बातें हमने की। विवेक जी, चलते चलते एक आखिरी जरूरी नुस्खा, जादू की पुड़िया क्या देना चाहेंगे आप अपने सुनने वालों को?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि एक चीज हर किसी ने अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि साइबर क्राइम किसी के साथ भी हो सकता है। आपको अगर साइबर क्राइम से बचना है तो सबसे बड़ा प्रिकॉशन है, आपको आने वाला जो भी कॉल है, जो भी मैसेज है, वो जेन्युइन है या नहीं, आप उसको वेरीफाई करें। जहां पे भी पेमेंट की बात आएगी, आपको अलर्ट मोड पे जाना जरूरी है कि कोई भी पेमेंट करने से पहले आप वो जेन्युइन है या नहीं, उसको आप वेरीफाई कीजिए। एंड अगर आपके साथ फिर भी ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है या आपके रिलेटिव फैमिली किसी के साथ भी हो जाता है, तो सबसे पहला काम है आपको 1930 ये जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन है उसके ऊपर कॉल करना है। अगर वो व्यस्त आए तो cybercrime.gov.in पोर्टल पे आपको रिपोर्ट कर सकते हैं आप। एंड फिर आपके पास और एक ऑप्शन है, आप जो आपका लोकल पुलिस स्टेशन है, हर पुलिस स्टेशन में आज साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है, वहां पे जाके भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं।
0: जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतना वक्त और इतनी जानकारियां आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
2: आप सुन रहे थे महाराष्ट्र पुलिस के साइबर क्राइम विभाग के सहायक पुलिस निरीक्षक विवेक तांबे से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं गुरमीत रामल मीत द्वारा लिखित और निर्देशित झलकी मुबारकबाद।
1: श्रीधरन, अरे ओ श्रीधरन, श्रीधरन तुम भी अजीब आदमी हो। पुकारते पुकारते मेरा गला भी खुश्क हो गया। तुम हो कि अपनी धुन में ही चले जा रहे हो।
2: बंधु तुम, सॉरी यार, मैंने ध्यान नहीं दिया।
1: श्रीधरन, तुम्हारे साथ ये कोई नई बात तो है नहीं।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: श्रीधरन, होना क्या है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है।
2: बंधु, हम तो ये जानते हैं कि वही होता है जो मंजूरे बंधु होता है।
1: क्यों बेकार में फूंक दे रहे हो यार, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
2: बंधु, पहले तुम्हारा इनसे परिचय तो।
1: अरे रे, इतनी जल्दी भी क्या है?
2: क्यों,
1: परिचय तो वहां किया जाता है जहां इंसान की कोई जानकारी ना हो।
2: कैसी जानकारी?
1: श्रीधरन के शौक के बारे में किसको पता नहीं।
2: शौक? कैसा शौक?
1: वैसे ऐसा शौक पालना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं, क्योंकि तुम्हारी तरह हर कोई ट्रिकबाज नहीं हो सकता।
3: आप किन बातों में उलझ गए, आगे क्यों नहीं चलते?
1: मैडम, मिस्टर श्रीधरन जी हमारे भी घनिष्ठ मित्र हैं। अगर अब नहीं है तो क्या हुआ, पहले तो थे ही। प्लीज हमें भी दो बातें करने दो।
3: आपके घनिष्ठ मित्र जरूर होंगे, लेकिन इस वक्त तो बोर मत कीजिए।
1: श्रीधरन जी, ये नई चिड़िया कहाँ से?
2: बंधु, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो?
1: जी कहना क्या है, मैं वही तो कह रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ।
2: क्या देख रहे हो?
1: नई चिड़िया।
2: क्यों बात बात बेसिर पैर की हांक रहे हो? तभी तो मैंने शुरू में ही कहा था कि तुम्हारा इनसे परिचय करा दूं।
3: ये आपके कैसे मित्र हैं जी, मुंह में जो आता है बोले जा रहे हैं।
2: रेखा, डोंट माइंड, इन्हें दिल लगी करने का शौक है।
1: मैंने सोचा था कि किसी दिन श्रीधरन के हाथ में कुमुदनी का हाथ होगा और मैं दोनों को मुबारकबाद दूंगा, पर तुम तो अभी अपना शौक ही पूरा कर रहे हो।
2: बंधु भाई, मजाक छोड़ो भी, इस वक्त भी मुबारकबाद देने का ही शुभ अवसर है। मैं कब से कह रहा हूं कि रेखा मेरी पत्नी ही तो है, 2 हफ्ते पहले ही तो हमारी शादी हुई है।
1: अच्छा, रियली? आप दोनों की शादी हो चुकी है?
2: जी हाँ, बिल्कुल हो चुकी है, पर तुम मेरी कोई बात सुनो तब ना।
1: इसका मतलब यह हुआ कि बेचारी कुमुदनी के साथ सिर्फ शौक का ही इश्क चल रहा था।
2: कुछ कहने से मैं तुम्हें रोक तो सकता नहीं, पर अब रेस्टोरेंट में चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे और तसल्ली से बातचीत करें।
1: डियर, अब नहीं, मैं भी मिसेस के इंतजार में हूं, हमें कहीं जरूरी पहुंचना है, उसने पहले ही देर कर दी है। ओके, शादी की मुबारकबाद, अब चलता हूं, फिर मिलेंगे।
3: अब खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, क्या आगे नहीं जाना है?
2: इस बंधु के बच्चे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है।
3: लेकिन एक बात तो पक्की है कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता।
2: उस बंधु के कहने मात्र से ही तुम्हें आग नजर आने लगी है?
3: ज्यादा बहाने मत बनाओ।
2: भला मैं क्यों बहाने बनाने लगा?
3: अपराधी आदमी के पास बहाने बनाने के अलावा और कुछ नहीं होता।
2: देखा, सच मानो कुमंदनी नाम की किसी लड़की को मैं जानता तक नहीं। मैं यही सोच रहा था कि बंधु ने उसका नाम कैसे लिया।
3: जब आपका शौक ही ऐसा रहा है तो किस किस का नाम याद रखोगे?
2: तुम्हारे वहम का इलाज मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि तुमसे शादी से पहले और ना ही अब मेरा किसी से कोई सरोकार नहीं है।
3: झूठ बोलने के लिए किसी तरह का प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं होती, जरा सी जुबान ही तो हिलानी होती है। मैं साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने ये एक्स्ट्रा शौक पालने हैं तो हमारा साथ साथ रहना नामुमकिन है। मैं जा रही हूँ।
2: रेखा, प्लीज गुस्से को थूक दो, मैं जो बता रहा हूँ उस पर

0: यकीन करो।
1: पीछे हट जाओ, मुझे मत छुओ, मेरा रास्ता छोड़ दो।
0: आखिर चाहती क्या हो? क्या दो हफ्ते में ही आपसी विश्वास, पारिवारिक आस्था और दाम्पत्य श्रद्धा धूल की तरह उड़ गई?
1: अच्छा हुआ जो दो हफ्ते में ही आपकी कलाई खुल गई, नहीं तो बाद में न जाने कितना पछताना पड़ता।
2: श्री धरन जी, क्या बात है, ये नवविवाहित जोड़ा सड़क पर क्यों दो दो हाथ कर रहा है?
0: चंदन आओ, इधर कहाँ जा रहे हो?
1: नमस्ते जी।
2: नमस्ते नमस्ते, क्या बात है, सब ठीक तो है ना?
0: चंदन भाई, तुम उस बंधु को तो जानते हो, वो किसी का सुखमय जीवन देखकर कभी खुश हो सकता है?
2: हाँ, लगता है वो चलता चलता तुम दोनों में भी झगड़े की चिंगारी सुलगा गया है।
0: तुम्हें कैसे पता लगा?
2: अरे उसका काम ही ये है, दूसरों के घर में आग लगाकर उसे हाथ सेकने का बड़ा ही शौक है।
0: क्या तुम्हारे साथ भी कुछ?
2: हाँ, पिछले दिनों वो हमारे घर आया, कहने लगा, चंदन जी वो सब तस्वीरें कहाँ गई जिन लड़कियों के साथ तुम घुमा फिरा करते थे? बस उसका इतना कहना था कि निशा के मन में मेरे प्रति भयंकर शंका पैदा हुई।
0: फिर तो घर लड़ाई का अखाड़ा बन गया होगा।
1: तो इसका मतलब उसने आपके घर में भी झूठी बातें कही थी?
2: अरे झूठ ही नहीं, बिल्कुल सफेद रूप में झूठी। जब बंधु सत्यार्थी ने खुद अपने मुख से निशा को बताया कि वो तो सिर्फ तिल लगी के लिए ही तस्वीरों की बातें कर रहा था, तो तब जाकर निशा के दिल से शंका की भावना मिटी।
1: मुबारकबाद देता देता वो न जाने क्या क्या कह गया। भाई साहब, मैं तो वास्तव में उसकी सब बातों का विश्वास कर गई।
0: और आग बबूला होकर मुझसे सड़क पर ही लड़ने लगी।
2: अरे श्रीधरन के बारे में तो मैं खुद प्रमाण पत्र जारी कर सकता हूँ, इसके समान कोई भी व्यक्ति आदर्श पति नहीं हो सकता। जीवन भर आंखें मूंद कर श्रीधरन के पीछे चलती रहोगी तब भी सुख ही सुख मिलेगा।
1: देखो जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने एक मिनट में न जाने क्या क्या नहीं कह डाला, मुझे माफ कर दो।
2: कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी तो जिंदगी की शुरुआत ही हुई है, आगे न जाने जिंदगी में कितने बंधु सत्यार्थी मिलेंगे।
0: अब बंधु एक बार मिल जाए तो?
2: वो तो अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट में बैठा ठाट से कॉफी पी रहा है और चीज पकौड़े खा रहा है।
1: अच्छा ये बात है,
0: हम दोनों के बीच में लड़ाई करा के खुद रेस्टोरेंट में बैठा पत्नी के साथ पकौड़े खा रहा है।
1: भाई साहब थैंक यू वेरी मच, अब हम भी रेस्टोरेंट ही जा रहे हैं, बंधु सत्यार्थी से वही मुलाकात होगी।
0: चंदन जी तुम भी चलो ना, दो मिनट गप्पाजी हो जाएगी।
2: मैं कहीं जरूरी काम से जा रहा हूँ, फिर कभी सही। अच्छा जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी।

0: आपने क्या सोचकर ये कह दिया? क्योंकि मैं आप पर शक कर सकती हूँ। मैं इतनी कमजोर नहीं कि लोगों की बातें सुनकर आप पर ताने कसने लगूं।
1: ओहो, तुम तो एकदम भावुक हो उठी। मैं तो बस नारी मानसिकता की बात कर रहा था, तुम पर कहाँ शक कर रहा हूँ।
0: मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं।
1: ममता, तुम्हारी यही तो खासियत है।
0: हाँ, क्योंकि मैं कोई ईर्ष्यालु किस्म की महिला नहीं।
1: तुम तो जानती हो ना, एक बार मैंने चंदन और निशा को खूब बेवकूफ बनाया था।
0: हाँ, मैं जानती हूँ, वो लड़कियों की तस्वीरों वाली गप मार के आपने उन्हें खूब बेवकूफ बनाया था। उनके घर में तो महाभारत छिड़ गया था।
1: और अब उसके दोस्त श्रीधरन और उसकी पत्नी रेखा सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हुए एक दूसरे के बाल लोच रहे हैं।
0: इसका मतलब उनके हनीमून को भी ग्रहण लगाए हो।
2: हेलो सत्यार्थी जी, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई।
1: क्या मुझसे कहा आपने?
2: और किससे कुछ कह सकती हूँ, आई एम टॉकिंग टू माई लवली फ्रेंड मिस्टर बंधु सत्यार्थी।
0: ये कौन है जी, जो इस तरह बेशर्मी से आपके मुंह लग रही है?
2: बंधु जी, ये कौन है जिसे हंस हंस कर बातें कर रहे हो?
1: ममता, मेरा ख्याल है कि ये मिसेज श्रीधरन है। हेलो हेलो मिसेज श्रीधरन।
2: कौन मिसेज श्रीधरन? मैं? मिस्टर बंधु, इस नई चिड़िया के सामने बनने की कोशिश मत करो। 10 मिनट लेट क्या हो गई? लगे इस मैडम के साथ रोमांस करने?
1: मैं
2: क्या 10 मिनट में मेरा वेट नहीं कर सकते थे?
0: आप इसके सामने मेमने की तरह मिमिया क्यों रहे हो? देखो देखो कितनी बेशर्म है, कैसे सटकर आपके पास बैठ गई है।
2: बंधु, इस बड़बड़ाती मैम को जाने के लिए तुम कहोगे या फिर मुझे ही?
1: तुम ये क्या कह रही हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, जबकि ममता मेरी पत्नी है जिसके लिए तुम ये सब कह रही हो।
2: लेकिन तुमने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि तुम मैरिड हो।
0: अच्छा, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, न जाने क्यों गले पड़ती जा रही है, इतनी हिम्मत?
2: मैडम, गले मैं नहीं तुम पड़ रही हो। मिस्टर बंधु सत्या

0: फैन है। चलो जी हम कहीं और चलते हैं, यहाँ रहेंगे तो ये बिना मतलब के कवा में हड्डी बनती रहेंगी।
1: तुम मुझे कहाँ खींचे जा रही हो, प्लीज प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। कहा ना, मैं तुम्हें पहचानता भी नहीं।
0: लगता है इस वक्त तुम्हारा मूड नहीं है तुमसे बात करने का। ओके मैं अभी चलती हूँ, थोड़ी देर के बाद आऊंगी। ओके बाय बाय।
1: अजीब बात, ना जाने ये पागल कहाँ से आ टपकी।
2: वहाँ से ही टपकी होगी जहाँ आप उसे रोज मिलते होंगे।
1: क्या मतलब?
2: वही जो तुम जानते हो।
1: क्या जानता हूँ?
2: कि वो कौन है।
1: कौन है?
2: वही होगी जिससे रोज मुलाकातें करते हो।
1: कौन मुलाकात करता है, मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं पहचानता।
2: मेरे सामने भोले बनने से वस्तु स्थिति में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं।
1: ममता यकीन करो वो कोई पागल थी।
2: हाँ, जब पोल खुलने लगी तो वो पागल हो गई। भला ऐसी कौन शरीफ औरत होगी जो सबके सामने पराए पुरुष के गले में हाथ डाल देगी।
1: ऐसी बेवकूफी करने से भला मैं कैसे रोक सकता था।
2: जब सब कुछ मेरे सामने हुआ है तो और आप कह भी क्या सकते हैं। कितने आत्मविश्वास से वो आपको अपना फास्ट फ्रेंड कह रही थी, आपको हाथ पकड़कर खींच रही थी। ऐसी औरतों के साथ घूमते हुए आपको शर्म नहीं आती है क्या?
1: ममता,
2: दूसरों की तो नुक्ताचीनी करते हो जबकि खुद दिल से वाले हो। बाल बच्चों वालों को ऐसी गिरी हरकतें करना शोभा देता है क्या? सच्चे और ईमानदार दिखाने के लिए अपने नाम के आगे क्यों सत्यार्थी लगा रखा है?
1: ममता धीरे बोलो, सब सुन रहे हैं, फिर बेमतलब की बातें तो मत करो। बेहतर है अब घर चलते हैं।
2: मेरा कोई घर बार नहीं है। अब उसी नखरे वाली को ले जाओ, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगे।
1: अब कहाँ जा रही हो?
2: जहाँ मेरा दिल करेगा। तुम उस परी को अपने साथ ले जाओ।
3: अब भाभी जी क्या हुआ, क्यों भाई साहब से बिगड़ रही हैं?
2: मुझसे क्या पूछते हो, पूछो पूछो अपने धोखेबाज 420 दोस्त से।
1: श्रीधरन, मैं आप लोगों से मिलकर यहाँ आ गया। यहाँ से हम दोनों को बाजार जाना था, चलते चलते चाय पीने बैठ गए तो ना जाने एक मॉडल टाइप की कौन सी लड़की थी वो मेरे पास आकर बैठ गई और लगी इधर उधर की बेतुकी बातें हाँकने। मैं उसे जानता तक नहीं, पहचानता भी नहीं, बस उसी बात को लेकर ममता बिगड़ रही है।
3: रेखा अब आ भी जाओ ना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि 10 वर्षों के वैवाहिक संबंधों में दरार आ जाए।
0: भाई बंधु जी ने सोचा शायद यही मुबारकबाद कहना जानते हो।
1: ममता ममता देखा, मैंने कहा था ना कि ये मुझे मिसेस श्रीधरन ही लगती हैं। बदले हुए कपड़ों में मैं पूरी तरह से पहचान नहीं पाया था।
3: तुम भी तो सड़क पर चलते चलते हम दोनों के बीच में संदेह के बीज बो आए थे।
0: और अगर चंदन भाई ना आते तो हमारा वही युद्ध छिड़ जाता, इसलिए बंधु भाई को सबक सिखाना जरूरी था।
3: मेरा ख्याल बंधु जी आइंदा के लिए तुम शंका के बीज बोने की हरकत नहीं करोगे।
1: अरे बाबा कभी नहीं, ममता का गुस्सा देखकर तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं बखूबी अंदाजा लगा सकता हूँ कि निष्ठावान से निष्ठावान नारी भी आशंका की कितनी जल्दी शिकार हो सकती है।
0: तो आप लाइन पे आ गए
1: हमेशा के लिए।
4: हवा महल में अभी आप सुन रहे थे झलकी मुबारकबाद। इसके लेखक और निर्देशक थे गुरमीत रामल मीत। आकाशवाणी शिमला की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

आप सुन रहे हैं विविध भारती, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन, हर लम्हा हर पल आपके साथ। कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में।

पेश है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए कमाल खान, सुजैन, सुनिधि चौहान की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीत है साजिद वाजिद का और फिल्म का नाम है वांटेड।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: 200 लीजिए सुनिए अगला गीत बेनी दयाल, सुनिधि चौहान और नाजिया हसन और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है अनवर खालिद ने, संगीत है बिद्दू का और फिल्म का नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत। नीरज श्रीधर अलीशा चुनौई की आवाजों में, गीतकार हैं गुलजार, संगीत है शंकर एहसान लॉय का और फिल्म का नाम है झूम बराबर झूम।

0: मेरा सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश सुनिए यो यो हनी सिंह और जैस्मिन की आवाजों में। गीतकार संगीतकार है यो यो हनी सिंह और फिल्म का नाम है किक।

0: साथियों, चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में। इस गीत को लिखा है पुनीत शर्मा ने, संगीत है रोशन का, रोहन रोहन का, और फिल्म का नाम है संजू।
1: प्राण प्रिय

इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है। सुनिए सुनाइए और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष

0: शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन एक स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज ऑर्बिट्स बिकम मोर क्राउडेड, टेक्नोलॉजीज मोर पावरफुल एंड एक्टर्स मोर न्यूमरस।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुंचने चाहिए।
1: चंद्रयान 3 मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। आदित्य L1 इज अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द सन। लास्ट ईयर एन इंडियन विजिटेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लुकिंग अहेड वी एम टू एस्टैब्लिश एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंड एन इंडियन टू द मून बाय 2040। इन ऑल दिस एफर्ट्स आवर गाइडिंग प्रिंसिपल हैज बीन क्लियर, दैट बेनिफिट्स मस्ट रीच ऑल ह्यूमैनिटी।
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेकमी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। दो दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील

0: अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे। उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
1: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
2: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेकर ट्रैफिक से लेकर लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट्स किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
1: भारत की अध्यक्षता चार प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। दो दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस और भारत की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार 3 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत ना होने देना। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा रोधी गांव और शहर तैयार करना है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। उधर दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम आपके लिए। मैं सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजों में।

0: युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
1: क्या बात है।
0: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
2: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
0: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: बिल्कुल।
2: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा है सूरज सनीम ने, संगीत है राम लक्ष्मण का और फिल्म का नाम है सातवां आसमान।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला और गटले
2: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
2: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेश।
2: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। गीतकार है इंदिवर, संगीत है राजेश रोशन का और फिल्म का नाम है किंग अंकल।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत है अनु मलिक का और फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं साधना सरगम की आवाज में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत है राजेश रोशन का और फिल्म का नाम है खून भरी मांग।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था, एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती हैं।
1: मुद्दई लाख दुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
0: बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते कि ये लड़का यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा मुंबई की तरफ जाने के लिए, इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया, पिताजी ने जमकर कुटुम्बस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान महबूब खान की।

महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थीं और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया। हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण हैं और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 बरस की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कांस्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका कान पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहां जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहां बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर आ पहुंचे मुंबई।

मुंबई में महबूब खान उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती, वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन गार्ड सचमुच इम्प्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्दशीर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहां से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्दशीर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्दशीर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दांव नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दांव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहां से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते, उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सीसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म औरत।

इसके बाद महबूब खान सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत महबूब खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म नजमा का निर्देशन किया। ये फिल्म साल 1943 में आई थी। इसके बाद उन्होंने तकदीर और हुमायूं जैसी फिल्में बनाई। सन 1946 महबूब खान के निर्देशन में आई फिल्म अनमोल घड़ी।

अनमोल घड़ी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तनवीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म काफी कामयाब रही।

सन 1949 महबूब खान के करियर की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था।

सन 1952 महबूब खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन। इसके कलाकार थे दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा। संगीत नौशाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

सन 1954 महबूब खान की फिल्म आई अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार, मधुबाला और निम्मी। संगीत नौशाद का था।

साथ जिसने अपनी यात्रा बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने, उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

0: भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आन हो, अमर हो, मदर इंडिया हो या औरत। सशक्त नायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएंगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया शायद ही किसी फिल्म ने किया होगा। कुछ गानों की झलक।
1: भर भर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए।

मदर इंडिया जैसी बड़ी लकीर खींचने के बाद महबूब खान ने ज्यादा फिल्में नहीं बनाई। सन 1962 में आई उनकी निर्देशित फिल्म सन ऑफ इंडिया।

एक फिल्मकार जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके सहन में सपनों की फसल लहलहा रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा विनम्र नमन।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्मकार महबूब खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। कोई डर है न कोई रोजन है न कोई रोशनदान है, जिंदगी की ये इमारत कितनी आलीशान है। एक छोटा सा दिल इसमें रहता है, ये प्यार का नगीना है, तस्वीर उनकी जिसमें झिलमिलाती है। बात क्या कहूँ, कल रात दिल ने जो कही, आ जा के देख लूँ तुझे जी भर के एक बार, उठे हुए हैं दिल में वो तूफान तेरे बगैर।

गुलों में रंग भरा ये प्यार का तोहफा, खुशबू फैली हो जैसे रात की तन्हाई में। कितने मौसम बीत गए ये रंगत तब जाके नजर आई है, जो अब आए हो तो कुछ देर बैठो, चमन की बेबसी का राज कलियों से पूछो।

आंखों की हया दिल मेरा चुरा लेती है, एक दिल एक निगाह कहाँ कहाँ छुपाऊं तुम्हें, सांसों की धड़कनों में कहाँ कहाँ बसाऊं तुम्हें। जिस तरह चांद सितारों में एक है, चांदनी फूल शरारों में एक है, रात खामोशी के तरानों में एक है, तू महजबी हजारों में एक है।

छाया अच्छा गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के कुछ और नगमे पेश करेंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

साथ इसे आप सुन रहे हैं छाया गीत। ये उल्फत आपकी है, मेहरबानी आपकी, वो दिल का नशेमन जब ठिठक गई थी घटाएं, भीगी भीगी थी बादलों की चुनर, बरस रही थी फजाएं, हया का पर्दा उठा दिल ही दिल में रही, लब तक आई न बात।

कहने को तो रात ठहरती नहीं, जुबान से तो कुछ न कहा, हुई नजरों से नजरों की बात। अजब अपना हाल होता जो विशाल यार होता, कभी जान सदके होती कभी दिल निसार होता।

की खुली पलकों पर सितारों ने ख्वाब सजाए हैं। जरा सी देर हो जाए तो क्या होगा, दिल से दिल की बात कुछ और होने दो, शम्माए मोहब्बत कुछ और देर जलने दो, जुल्म ढाने का वरना डर होगा, ये इल्जाम भी हमारे सर होगा।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: मेरा सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं सोना महापात्रा की आवाज में हुसैन हैदरी का लिखा ये अगार फिल्मी गीत।

सोना महापात्रा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये गैर फिल्मी गीत। और आइए अब सुनते हैं हरिओम शरण का गाया ये भक्ति पथ।

हरिओम शरण की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये भक्ति पद। और आइए अब सुनते हैं बेगम आबिदा परवीन को।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। मुकेश की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं जिगर मुरादाबादी का कलाम। संगीतकार मुरली मनोहर स्वरूप हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म वीर दुर्गादास से लिया है। गीतकार पंडित भरत व्यास हैं और धुन बनाई है SN त्रिपाठी ने।

0: उत्तम सिंह, मुझको हुई ना खबर, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डिले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। रंग तरंग कार्यक्रम की अगली पेशकश वडाली बंधुओं की आवाज़।

43 मिनट हुए हैं। श्रोताओं, हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। कल सुबह ठीक 8:51 पर हमारी अगली प्रसारण सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।